0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक

0: यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार का सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंड कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो ईश्वर की रचना है। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर है कि वो माया चुनता है या ज्ञान।

जब ईश्वर को सखा भाव में आत्मसात किया जाता है तो भक्ति रस कुछ अलग ही रंग लाता है। मित्र से हंसी ठठोली न हो तो भला किससे होगी।

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, दूसरी कड़ी सुनिएगा। आज कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रूणु मजूमदार। 7 बजे से भूले बिसरे गीत, सुबह 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से समाचार प्रभात, सुबह 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 से चित्रलोक। 9:00 ये कार्यक्रम सुन सकते हैं सुबह 9:30 से, केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज सुन सकते हैं 10 बजे से, और इस कार्यक्रम में सुनिए।

ये वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। सुबह 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे से सखी सहेली कार्यक्रम और 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन सुन सकते हैं कार्यक्रम और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में निर्देशक फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी सुन सकते हैं, प्रस्तुति जुबैर खान की। 8 सुनिए रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन सुरेंद्र कौशिक का, निर्देशन सुशील बैनर्जी का। रात 8:15 से चित्रलोक। 8:45 से सुन सकते हैं समाचार संध्या, 9 बजे से सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। रात 10 बजे से छाया गीत। से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 237वीं कड़ी।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। तो आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार। रोनू दादा, आपका एक बार फिर स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो बताइए, आज की इस कड़ी में अपने खजाने से कौन से मोती बिखेरेंगे? मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो कि बांसुरी के जन्मदाता, बांसुरी की उत्पत्ति, इस संदर्भ में कुछ बताएंगे।
2: इंग्लिश में दो लाइनें कही जाती हैं, When there was nothing in the world, still there was sound. And that sound was sound of nature. जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तो भी नेचर था।
1: बिल्कुल।
2: जीव जंतु, आदि मानव या कुछ भी, उससे भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियां थी, जंगल थे, वन थे, तो बांस भी था। तो ये कहना कि भगवान कृष्ण जी से बांसुरी की शुरुआत हुई, ये गलत है। उससे पहले भी बांसुरी थी।
1: बिल्कुल।
2: उन्होंने बांसुरी को एक साज की तरह बजाया जिससे लोग प्रेरित हुए, मगर जंगल में उन बांस के अंदर जो कीड़े मकोड़े छेद कर देते, मैंने खुद जाके सिलचर, आसाम सिलचर में जाके मैंने खुद जंगल में मैं गया था
1: जी जी।
2: और मैंने देखा कि ऐसा लग रहा है कि हवा जब चल रही तो बहुत लोग एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो कीड़े मकोड़े जो छेद करते हैं वहां से इंसान को बजाने की प्रेरणा मिली, उन कीड़े मकोड़ों की वजह से। और बांसुरी लोक संगीत में बजती रही
1: जी।
2: और शास्त्रीय संगीत में तो सारंगी सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है और रावण हत्ता के रूप में बजता था
1: जी।
2: क्योंकि रामायण काल में रावण उसको बजाते थे। और शास्त्रीय संगीत में बांसुरी का जो स्थान है वो नहीं था। लोग सोचते थे ये तो बस छोटी छोटी बंसी है, ये नुमाइश में बजेगा और लोकवाद्य कोई भाटियाली धुन या कजरी बनारस की बजेगी और या तो फिर आदिवासी लोग बजाएंगे
1: जी।
2: तो इसको शास्त्रीय संगीत में लाने का श्रेय स्वर्गीय पंडित पन्नालाल घोष जी को जाता है
1: जी जी, जी।
2: संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो उनका उम्र बहुत कम था, मेरे जन्म से पहले वो गुजर गए 1960 में। तो उन्होंने ये बड़ी बांसुरी जो आप देख रहे हैं
1: जी जी,
2: जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने खाली हाथ बजाई थी
1: जी,
2: इस बांसुरी का निर्माण उन्होंने किया।
1: क्या
2: और सा कैसे बजेगा?
1: हाँ।
2: इस कंसेप्ट, क्योंकि लोक संगीत में तो क्या है कि चार छेद ओपन करके भी बजा हाँ। दीजिए, पांच छेद भी खुला रहे तो क्या नुकसान है? कोई साइंस नहीं है ना उसमें
1: जी जी।
2: उसमें सिर्फ आत्मा है। जब वो राग रागिनी में आ जाता तो उसमें साइंस भी आ जाता है, विज्ञान आ जाता है,
1: सुर आ जाता है, फिर
2: जी
1: सुरों की संख्या
2: जी। तो उन्होंने तीन होल बंद रखना, तीन खोलना, ये सा दे दिया हमको।
1: अच्छा,
2: इतनी
1: क्या
2: बड़ी उनकी। और ये जो छोटी उंगली है
1: हाँ।
2: उससे तीव्र मध्यम बजाने की कला भी, इसीलिए जो पन्ना बाबू को फॉलो करते हैं
1: हाँ।
2: वो सेवन होल टेक्निक बजाते हैं, और जो हरिप्रसाद जी के गुरु भोलानाथ जी की टेक्निक से बजाते हैं वो लोग छह होल से बजाते हैं।
1: वाह, क्या बात है।
2: और फिर उसके बाद पन्ना बाबू और रघुनाथ सेठ जी को ये भी श्रेय जाता है कि थंब के नीचे एक होल लगाए ताकि सा से पा तक भीड़ देखे। मैं बजा के सुना रहा हूं
1: जी।
2: ऐसे फ्रेज जो बांसुरी में बजते नहीं थे वो बजने लगे। और आज उसके बाद चार प्रमुख बांसुरी वादक पन्ना बाबू से प्रेरणा लेके बने। पहले बुजुर्ग पन्ना बाबू के सन इन लॉ, उनके जवाई, क्योंकि पन्ना बाबू की बेटी से उन्होंने शादी की थी
1: जी जी,
2: देवेंद्र मुर्देश्वर जी,
1: जी।
2: उसके बाद मेरे गुरु जी बड़े थे वो पंडित विजय राघव राव जी,
1: जी।
2: और उसके बाद रघुनाथ सेठ जी, और इन तीनों से छोटे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। हरि जी ने तो कमाल ही कर दिया
1: जी।
2: मैंने एक बार हरि जी को एक नाम दिया था, जन्माष्टमी के दिन पीटीआई ने मुझसे पूछा कि हर साल हम लोग एक बांसुरी वादक से बात करते हैं, इस साल वो आप हैं रोनू दादा। उसी साल मुझे कुमार गंधर्व अवार्ड मिला था
1: जी जी,
2: 2006
1: जी जी।
2: तो बोले आप पन्ना बाबू और हरि जी को कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पन्ना बाबू देवकी है।
1: वाह,
2: और हरिप्रसाद जी माँ यशोदा है।
1: क्या बात है, गजब।
2: क्योंकि माँ देवकी ने जन्म दिया मगर बांसुरी को पाल पोस्ट के बड़ा किया हरीश जी ने। उन्होंने घर घर पहुंचा दिया, क्योंकि पन्ना बाबू का जो अधूरा काम था असामयिक, वो तो 60 भी पूरा नहीं कर पाए।
1: बहुत कम उम्र में चले गए, बिल्कुल
2: 53-54 साल की उम्र में गुजर गए। तो बहुत सारा काम अधूरा था, उस अधूरे काम को इन चारों के साथ मिलकर हरी जी ने फिर पूरा किया। फिर वो पीटीआई ने पूछा, तो फिर आप क्या है? मैंने कहा मैं सुदामा हूँ।
1: गजब, क्या बात है।
2: मैं तो कृष्ण की भक्ति करता हूँ।
1: अद्भुत।
2: मेरे पास कुछ नहीं है, वो झाल मुड़ी में जो मुड़ी डालते हैं वो मैं तौलिया में लपेट के कृष्ण को खिला दूंगा, खुश हो जाएंगे मेरा वादन सुन के।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने भी बांसुरी को जनता तक, आम जनता तक पहुंचाई और बांसुरी एकदम से प्रचलित हो गई। दादा, आपने बांसुरी में कुछ नए प्रयोग किए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
2: मुझे ऐसा लगता था कि बीनकारी अंग जो है
1: जी,
2: जो कि रुद्र वीणा को बीन भी बोलते हैं
1: जी,
2: तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि बीन मतलब वो सपेरा जो बीन बजाता है वो बीन, तो बीनकार मतलब बीना
1: जी,
2: वादक के अंदर जो घसीट का जो काम होता है वो बांसुरी में आप ऐसे कह सकते हैं कि वो मैंने सबसे पहले घसीट और आंदोलन
1: जी,
2: जो चीज रुद्र वीणा में बजा के सारे तो भैरव में कोमल ऋषभ अति कोमल है और धैवत भी अति कोमल है, मतलब कोमल से भी और थोड़ा सा उतरा हुआ

0: अब मंद्र सप्तक के लिए मैंने ये शंख बांसुरी बनाई
1: जी जी,
0: जो अब पूरे संसार में पॉपुलर है
1: जी जी।
0: और बहुत सारे बांसुरी वादक मुझे फोन करते हैं कि पंडित जी ये जो नीचे के सा मंद्र सप्तक
1: जी
0: कि खरज खरज का काम के लिए ये जो आपने बनाया और इसको कॉन्सर्ट का हिस्सा ही बना दिया आपने, तो खुशी होती है कि वो कहते हैं ना कि मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा
1: जी
0: मेरे वादन में मुझे ढूंढा करेगी दुनिया।
1: क्या बात है।
0: तो मैं धुआं बन के जहां से चला जाऊंगा तो मैं एक दिन नहीं रहूंगा मगर मेरा शंख बांसुरी बच्चे बजाएंगे बुजुर्ग बजाएंगे मुझे उसकी खुशी है। तो मैंने कभी किसी को रोका नहीं कि ये मेरे नाम से रजिस्टर है आप मत बजाइए, ऐसी मैंने दृष्टता कभी नहीं की
1: जी।
0: देखिए शंख बांसुरी में भैरव का भैरव में शंकर भगवान की जटाओं का जो गहरापन है भोले बाबा का वो देखिए।

0: ये आपने
1: अति
0: आज
1: सुंदर, अति सुंदर। तो दादा, ये जो शंख बांसुरी आपने बजाई, इसकी विशेषता भी बताएंगे हमारे श्रोताओं की, क्या विशेषता
0: मैं
1: है?
0: विजय राघव राव जी के बाद भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से भी मैंने सीखा
1: जी।
0: तो मैं उनके साथ मॉस्को गया था 1988 में।
1: जी जी।
0: भारत का फेस्टिवल ऑफ इंडिया वहां चल रहा था और आप जैसे जानते हैं रशिया शुरू से हमारा दोस्त रहा है
1: जी।
0: और रशियन लोग बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। वहां जब सब लोग सीख रहे थे, मेरे सीनियर गुरु भाई पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और पंडित तरुण भट्टाचार्य जी और पार्थो सारथी जो
1: जी,
0: मेरी
1: जी।
0: जनरेशन का ही है, शुभेंद्र राव, ये लोग मंद्र सप्तक का काम बहुत अच्छा कर रहे थे
1: जी, जी।
0: और मैं नहीं कर पा रहा था।
1: जी
0: छोटी उंगली जो जिसको हम लोग लिटिल फिंगर

0: जाने से लगता था शंख बज रहा है।
1: जी जी जी।
0: तो उसलिए मैंने ये नाम इसका दे दिया कि शंख की तरह ये बजता रहे। और मंद्र सप्तक
1: जी
0: मैं चला गया फिर मैं नीचे के साथ तक।
1: बिल्कुल। और जब कभी जब थियरी में लोग सीखेंगे बांसुरी की थियरी के बारे में, तो इस शंख बांसुरी को उन किताब के पन्नों पर अंकित किया जाना चाहिए। और
0: किया भी है दीपक तो, करके लालमणि सिंह वो सरदार हैं
1: जी,
0: तो उन्होंने पूरा PhD ही किया मेरे ऊपर।
1: क्या बात है।
0: उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में ऐसा लिखा जो मुझे अपने मुंह से बोलते हुए भी ये लग रहा है कि मैं अपनी तारीफ कैसे करूं। उन्होंने कहा कि रोनू के वादन में आमूलचूल परिवर्तन रविशंकर जी के पास जाने के बाद हुआ। उनका बजाने में जो कृंतन जमजमा की जो होती है ना, ताराना ना ना ना, ये करेंगे तो गमक हो जाएगा। उसके पहले का जो है उसमें स्ट्रेस दिए बगैर जो जमजमा का ताना है
1: जी, जी,
0: जो विलायत खान साहब जिसके बादशाह माने जाते थे।
1: क्या बात है। तो ये जो जानकारियों का खजाना है, इसको हम अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर विराम दे रहे हैं क्योंकि हमारा आज की कड़ी का समय समाप्त हो रहा है। कल ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस कुछ ही पलों के बाद।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

तलत महमूद की आवाज में गीत आप सुन रहे थे। बारादरी फिल्म के इस गीत को लिखा खुमार बाराबंकवी ने और इसे संगीत से सजाया शौकत दहलवी नाशाद ने। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं आप।

0: देवदास फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना।
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए

0: बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: तलत महमूद की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल आप सुन रहे थे। पंडित हुसनलाल भगतराम का संगीत आदिले जहांगीर फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में उड़न खटोला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा। नौशाद का संगीत कार्यक्रम भूले भी से गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा दें, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म श्री 420। सुनिए ये गीत।

0: श्री 420 फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में आपने सुना, और इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: देखो टर मरे

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सांभळो छो, दरियो खेडवा जाओ छो तो टोकन तो लीधु छे ने?
2: हा हा, याद राखी ने लीधु छे। मने ए पण खबर छे के जे व्यक्ति ना नाम नु टोकन होय तेज व्यक्ति दरियो खेडवा जई शके छे। बीजा कोई ना नामे दरियो खेडवा जवू ए सजापात्र गुनो छे, अने एम करवाथी माछीमारी नु लाइसेंस कैंसल थई शके छे, अने डीजल पर मळती सबसिडी पण बंद थई शके छे।
1: ए ध्यान राखजो के शंकास्पद बोट, विदेशी के अजाणी व्यक्ति देखाय तो तरत ज 1093 पर मरीन पोलिस ने जाण करवी।
2: हा मारी मां, कायदा नु पालन करीश अने टोकन लईने ज दरियो खेडवा जईश। गुजरात मरीन पुलिस द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मजबूत पायो, उज्जवल भविष्य, निपुण गुजरात अभियान साथे शिक्षण में नवी उड़ान, पायानी साक्षरता अने संख्या ज्ञान द्वारा दरेक बाळक ने सक्षम बनावानो संकल्प। निपुण बाळक, निपुण भारत। वाचन, लेखन अने गणननी आवश्यक कुशलताओ साथे बाळकोना सर्वांगी विकास तरफ एक महत्वपूर्ण पगलू। निपुण शाळा, निपुण गुजरात थी साकार थई रह्यु छे निपुण भारत नुं स्वप्न। विकसित गुजरात, विकसित भारत। शिक्षण विभाग, गुजरात सरकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में आप सुन रहे थे लाल पत्थर फिल्म का ये गीत, नीरज ने से लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम हेरा ही प्यार के विविध भारती पर।
1: क्या
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la. किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे कल आज और कल फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा शैली शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मन मंदिर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पराया धन फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, आनंद अक्षी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही हम हेराही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्वकप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सुनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के 2-तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डिजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से चार लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4,00,000 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमेरिका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की

0: खबर है। आयात के दम पर जीएसटी संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी एनसीआर में दस्तक दे सकता है मानसून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल एनसीआर, हरियाणा और पंजाब। दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट। चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

दोस्तों, सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्यक्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का ये गीत, वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात करें नींद की, क्योंकि बाकी सब तो जिंदगी में बढ़िया है लेकिन नींद का क्या करें जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए हम देर तक जागते हैं और देर तक सोते भी हैं। कुछ लोग, सबको तो सोने का नहीं मिलता देर तक, तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई भी काम हमने किया हो और उसका श्रेय किसी को मिले तो हमें बुरा लगता है। वैसे किसी और ने कुछ गलती की हो और उसकी वजह से अगर हमें सजा मिले तो भी बुरा लगता है। तो अक्सर जो नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती उसका दोष मिलता है मोबाइल को, और साथ ही जब हम जाग रहे हैं लेकिन सारा दोष मिल रहा है मोबाइल को, कोई सीरीज को कि भाई इतनी अच्छी थी कि हम देखते रह गए, या फिर दोस्तों को कि भाई उनका फोन आ गया था या हमारे दोस्त आ गए थे हमें बुलाकर ले गए। तो ये क्या तरीका है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करने वाले हैं, निर्णय तो हमारे ऊपर ही है ना। चलिए ठीक है, दोस्तों पर आपका काबू ना चल पाए लेकिन मोबाइल पर और किसी सीरीज को देखने पर तो आपका बिल्कुल काबू रहता है। मोबाइल का भी आपके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, जहां टीवी पर कुछ भी चीजें देख रहे हैं, उसके लिए भी रिमोट भी आपके हाथ में ही है। तो जरा याद कीजिए वो दिन जब आप समय से सोते थे, समय से जागते थे, और उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि भाई वो दिन क्या दिन थे।

तुषार जोशी की आवाज में छिछोरे फिल्म का गीत आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

स्टीवन बेन और दीक्षा तूर की आवाजों में आपने सुना सनक फिल्म से ये गीत, मनोज यादव और समीर अंजान के बोल, नदीम श्रवण और चिरंतन भट्ट का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

यमला पगला दीवाना फिर से, ये फिल्म थी जिसका गीत आप सुन रहे थे सचेत टंडन की आवाज में, पुलकित ऋषि ने से लिखा, सचेत परंपरा का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बात हो रही है नींद की, कि भाई नींद पूरी क्यों नहीं हो रही है, किसकी नजर लगी हमारी नींद पर, क्यों ना उसे हम हटा दें और अच्छी नींद पा लें। लेकिन ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, असली बात कौन बताएगा, भाई हम ही बताएंगे। तो अच्छे समय पर सोने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सोने का एक समय पहले निर्धारित कर लें कि इस समय में मुझे सोना है, और रोजाना रात का 10 बजे हो, 9 बजे हो, जो भी हो, एक समय निर्धारित कर लें। और ये तो हम नहीं कह सकते कि फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़रूरी काम भी होते हैं और इससे हम दूर उतने ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये एक व्यवहारिक तौर पर हम कह सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरी हो। कोई बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़रूरी मेल भेजना हो, बहुत ज़रूरी संदेश भेजना हो, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह देखने के लिए ना करें फ़ोन का इस्तेमाल। कोई शांत सा संगीत लगा लीजिए, और चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं उस वक्त भी, या डायरी लिखने की एक आदत आप डाल सकते हैं रोजाना रात में, तो इससे भी मन शांत होता है और पूरे दिन क्या क्या हुआ इसका लेखा जोखा तो मिलता ही है। साथ ही आपको भी पता चलता है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या भावनाएं हैं आपकी। और आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं, या घर में बच्चे हों तो उनको कहानी सुनाने का एक समय निर्धारित कर लें रात का, तो उनकी भी जो देर से सोने की आदत है या फोन देखने की आदत है वो सब भी दूर होती जाएगी, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ सोने का जो अपना एक स्थान तो तय होता ही है, तो उस स्थान पर चले जाएं उस वक्त, तो एक मन को संदेश मिलता है कि हाँ अब सोने का वक्त हो चला है, तो वो जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है या बहुत ज़्यादा कुछ काम करने के लिए एक्टिव रहता है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है और समय पर आपको नींद आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक जिद पाल लें कि सोना है समय पर और रोजाना, और ये जिद अगर आप पाल लेंगे तो एक अच्छी जिद है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये जिद जरूर पालेंगे।

निकिता गांधी की आवाज में रश्मि रॉकेट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कौशल मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। तो भाई, किस तरह से अच्छी नींद हो आपकी, इसके बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अब आप इतनी जल्दी तो जल्दी सोने की आदत पड़ेगी नहीं, तो जब तक आप देर तक जाग रहे हैं तो आपको एक बात और बता दें कि विविध भारती आप दिन में कभी भी किसी भी समय सुन सकते हैं। दिन रात 24 घंटे आप विविध भारती कभी भी सुन सकते हैं हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो बस जब तक जाग रहे हैं तो विविध भारती तो आपके साथ ही बनी ही रहेगी।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का वक्त है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, और हम बात कर रहे थे नींद की, कि नींद क्यों समय पर पूरी नहीं होती। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई मैच देखने के लिए भी जागते हैं और ये मैच हम तक पहुंचाते हैं खेल पत्रकार, जिन जो आंखों देखा हाल अपना सुनाते हैं या हमें दिखाते हैं, और साथ ही साथ कमेंट्री भी होती रहती है। बहुत कुछ होता है इसके पीछे और इसकी वजह से हम जागते रहते हैं और रोमांच बना रहता है। आज है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 1994 में। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी, और इसलिए इस संघ के स्थापना दिवस को ही विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाने के लिए चुना गया। और ये दिन उन मेहनती पत्रकारों की भूमिका को उजागर करने का है, जो दिन रात लगातार खेल के मैदान से आंखों देखा हाल रेडियो, टीवी और अन्य माध्यमों से हम तक पहुंचाते हैं, और इनकी पत्रकारिता निष्पक्षता, शांति, एकजुटता और खेल भावना का संदेश आम जन तक पहुंचाती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो ये करते हैं। तो आज विश्व खेल पत्रकार दिवस पर हम सभी खेल पत्रकारों को शुभकामनाएं देते हैं और उनके कामों के लिए देते हैं उन्हें धन्यवाद।
1: India in deep trouble now, having lost 2 matches in a row.
2: अपना है दिल ये आज का।
3: मैं मैच देखने आऊं।

रांझणा फिल्म का ये गीत आपने सुना, सिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाजें, इरशाद कामिल के बोल, A.R. रहमान का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक में अब आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा इरशाद कामिल ने, विशाल शेखर का संगीत, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, दिन भर में जहां भी रहिए रहिए विविध भारती के साथ, और दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

0: दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।
1: उंगली में

0: नदीना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, न फनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहां याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला।

0: जानवर से नहीं वफादार। ओ हतम तेल वो तोड़ दे दम, मरते दम तक चले ये कम कम। अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं सचेता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की नामी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ भी मोहम्मद अजीज का जुड़ाव दोस्तों लंबी अवधि तक बना रहा।

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों, मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौड़वाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर्स के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सुरती सिजलर जहाँ तमे मानशो डिलिशियस वातोनी साथे मेलोडियस गीतो।

0: हेलो, आकाशवाणी सूरत एफएम स्पीकिंग।
1: हाँ, सूरत एफएम।
0: कौन बोलो?
1: हाँ मैडम, हूँ एक व्यापारी बोलू छू।
0: ओके, केवो चाले छे आपनो व्यापार?
1: चाले राके बेन, बहु मजा नथी आवती।
0: चलवो नहीं, धमधमात दौड़ाओ आपना व्यापार ने। अमारा असंख्य श्रोताओ सुधी पहुँचाड़ो आपनी वात। जाहेरात आपो आकाशवाणी विविध भारती सूरत एफएम पर।
2: सूरत एफएम।
0: अमारो फोन नंबर छे 2234450 અને 9428404140, અથવા તો ઈમેલ કરો suratfm1011@gmail.com પર. આપની સમૃદ્ધિનો સારથી સુરત એફએમ 101.1.

0: सूरत एफएम पर तो गुजरा हुआ जमाना आता है बार बार, थई जाओ सवार सुरीला समयनी पाखो पर, करिए गुजरा हुआ जमाना नी सुरीली सफर। सोमवार थी शुक्रवार सांजे
1: 6:05
2: ऑन सूरत एफएम 101.1 तेमज न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध।
3: सुरती सिजलर जहाँ तमें मानशो डिलिशियस वातों ने साथे मेलोडियस गीतों।

रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 0261-223-6209। सुनिए अपने पसंदीदा नए फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।

0: का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सहमेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।
2: अलिया सिकंदर, तू अत्यारे दरिये जाई छे?
3: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछी मारी न कराय, समझो?
2: ए बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेड़वो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। અને હા, જો કોઈ અજાણી અથવા શંકાસ્પદ વ્યક્તિ કે બોટ દરિયામાં દેખાય તો તાત્કાલિક 1093 પર કોલ કરી મરીન પોલીસને જાણ કરવી આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી। ગુજરાત મરીન પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત
4: હર રોજ સુબહ 7 બજે જરૂર સુનિયે કાર્યક્રમ।

0: भोले बिसरे गीत जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विकसित भारत 2047 ना संकल्प साथे गुजरात शिक्षण मा गुणवत्ता नी नवी दिशा तरफ आगळ वधी रह्यु छे। निपुण गुजरात अभियान, नवा राज्य अभ्यासक्रम अने स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अश्योरेंस फ्रेमवर्क SQAAF द्वारा शाळाओं मा गुणवत्ता युक्त शिक्षण ने वधु सशक्त बनाववामां आवी रह्यु छे। गुणोत्सव शिक्षण मा श्रेष्ठता नी नवी ओळख बनी रह्यु छे। विकसित गुजरात ना पाया मजबूत बनावतो गुणवत्ता सभर शिक्षण, गुणवत्ता युक्त शिक्षण, उज्ज्वल भविष्य। शिक्षण विभाग, गुजरात सरकार।
0: શ્રોતાઓ, આપના રેડિયો સેટ ઉપર બુધવાર થી રવિવાર દરમિયાન સાંજે 4 વાગે પ્રસ્તુત થશે પ્રાયોજિત કાર્યક્રમ લમ્હે, સાંભળવાનું ચૂકશો નહીં।
2: બહુત બહુત સ્વાગત હૈ।

अभी आपने सुना यादों की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बाबरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: नवी आशाओं, नवा सपनाओ, नवा योगना शिक्षण ने नवी दिशा। राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 आधारित स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCF साथ गुजरात शिक्षण में नवी दिशा तरफ आगे बढ़ रही है। बाड़कों सर्वांगी विकास ने समर्पित आ अभ्यासक्रम ज्ञान कौशल्य मूल्यों अने सर्जनात्मकता नो समन्वय साथ है। उत्तम शिक्षण उज्ज्वल गुजरात ना ध्येय साथ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क शिक्षण विभाग गुजरात सरकार नो एक मजबूत पगलू है। शिक्षण विभाग गुजरात सरकार।
2: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: મારા વાલા સાગર ખેડુ ભાઈઓ, દરિયો ખેડવા જાઓ એ પહેલા હવામાન વિભાગની આગાહી અને દરિયાની સ્થિતિને હંમેશા ધ્યાને રાખો। ફિશરીઝ વિભાગ દ્વારા હવામાન ખરાબ હોવાની ચેતવણી હોય તો દરિયે જવાનું ટાળો, અને જો દરિયામાં હોવ તો તુરત જ પાછા આવી જાઓ। આ ચેતવણીની અવગણનાના કિસ્સામાં બોટ ડૂબવાના બનાવો નોંધાયેલ છે, અને કોઈ સંદિગ્ધ વ્યક્તિ કે બોટ માછીમારી કરતું દેખાય તો તુરત જ 1093 પર કોલ કરી મરીન પોલીસને જાણ કરો। હવામાનને સમજી બનો સુરક્ષિત ખેવૈયા। આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી। ગુજરાત મરીન પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત।
4: 101.1
5: मेगाहर्ट्ज़ सूरत एफएम। हेलो, आकाशवाणी सूरत एफएम स्पीकिंग।
6: हाँ, सूरत एफएम।
5: कौन बोलो?
6: हाँ मैडम, हूँ एक व्यापारी बोलू छु।
5: ओके, केवो चले छे आपनो व्यापार?
6: चाले राके बेन, बहु मजा नथी आवती।
5: चलवो नहीं, धमधमात दौड़ाओ आपना व्यापार ने। अमारा असंख्य श्रोताओ सुधी पहुंचाड़ो आपनी वात। जाहेरात आपो आकाशवाणी विविध भारती सूरत एफएम पर।

0: आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियाँ चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है। तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है, हमें ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम हैं जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीला सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखते हैं कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आईं, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की। 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है, क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने, और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं, तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितने गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नज़र डालते चलें जो कि आपकी पसंद हैं। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता माँ

दरअसल मौसम को लेके इतने खूबसूरत गीत हैं कि अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी प्ले करते चलें तो आज के कार्यक्रम का वक्त ही पूरा हो जाएगा, इसलिए कुछ गीतों को हमने छाट कर लिया है, चुनकर लिया है। अब जो गीत हमने चुना है वो तो आपको सुनवाएंगे ही, आपसे पूछेंगे फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम, लेकिन एक सवाल और है। आज की इबारत में शुरुआत में एक गीत के अंतरे की कुछ पंक्तियां छिपी हुई हैं, आपको वो गीत पहचानना है, फिल्म का नाम बताना है और साथ ही वो अंतरा भी बताना है कि वो अंतरा असल में क्या है, उसमें से कुछ शब्द लिए हैं अंतरे के। तो अब ये गीत और बताइए फिल्म का नाम और मुख्य कलाकारों के नाम।

बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के उन जवाबों के लिए जो उन्होंने तुरंत भेजे हैं। बताया है कि फिल्म ओपरा हाउस का ये गाना जिसमें प्रमुख कलाकार रहे अजीत और बी सरोजा देवी, और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ गीत की ये कुछ पंक्तियाँ थीं, कुछ शब्द असल में चुने थे उसके एक अंतरे से, और बताया है कि कभी कभी कभी फिल्म में अमित जी स्टेज पर गा रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि अगर वो अंतरा आपको याद आ रहा हो तो जरूर लिखें, अभी कोई वैसा जवाब दिख नहीं रहा है। वैसे मौसम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो खूबसूरती का और तमाम उन चीज़ों का जो प्रकृति से जोड़ती हैं हमें, उन सब की बातें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मौसम एक चीज़ और सिखाता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम, और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ें, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है, लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद्य हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है, उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं, पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल आंखों को नहीं आत्मा को भी स्पर्श करता है। फूलों की मुस्कान, रजनीगंधा की भीनी सुगंध और सुहाने मौसम का यह सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलगंदी में जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, 100 साल पहले तो नहीं 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहां है, बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है विविध भारती सुनना। हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे।

0: जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है। सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य, फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य, सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत हो उठता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?
1: नहीं।

सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना, और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफी साहब की आवाज है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए, हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है, और बड़ा प्यारा गीत दिल थाम चले हम, जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो, और ये पर्वतों के दायरे ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम, और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब की गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को 1 घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है। मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है। सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्म पत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमई हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, और साथ ही आपको यह भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

0: पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना, और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ। बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानी आज सुबह से ही बरस रही हैं। सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी। ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं। हाँ, ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए। खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के। सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का। लिखा है, ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा, हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा, वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है, लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है। इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है, कहाँ से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन देखने के साथ जो उसको एक उल्लास जुड़ा रहता है वो कैसे महसूस होगा। ये हमारे एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है, ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनीगंधा की भीनी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है, सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है, बिल्कुल बादल बिजली चंदन पानी और सुमन सुगंध की तरह। धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज़, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज़ पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा, तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दर्द झेल रहे हैं। ये हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की

व्यक्ति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावा इसे समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नज़र में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

0: करती है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत, दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

0: मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा 3 दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
2: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
3: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बालताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावरीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया, और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजुनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉ जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
5: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
6: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आपने ट्यून किया है
8: आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा, प्रादेशिक समाचार संस्कृति भूंडिया वांचे छे। વડોદરાની માંજલપુર વિધાનસભા બેઠક પર પેટા ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ જાહેર કરાયો છે। કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ અનુસાર 6 જુલાઈએ આ પેટા ચૂંટણીનું જાહેરનામું બહાર પડશે। 13 જુલાઈ સુધી ઉમેદવારીપત્રો ભરી શકાશે, જ્યારે 16 જુલાઈ ઉમેદવારીપત્રો પરત ખેંચવાનો અંતિમ દિવસ રહેશે। આ બેઠક પર 30 જુલાઈએ મતદાન યોજાશે, જ્યારે 3 ઓગસ્ટે મતગણતરી હાથ ધરાશે। ઉલ્લેખનીય છે કે તાજેતરમાં જ માંજલપુરના ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ યોગેશ પટેલના અવસાનના કારણે આ વિધાનસભા બેઠક ખાલી પડી હતી। રાજ્યમાં મહિલાઓ અને બાળકો માટે ભયમુક્ત ડિજિટલ માળખું બનાવવા ગુજરાત પોલીસે ઓપરેશન સુરક્ષિત સાયબર સ્પેસ શરૂ કર્યું છે। આ 28 દિવસીય રાજ્યવ્યાપી અભિયાન હેઠળ મહિલાઓ અને બાળકોની સુરક્ષા માટે સાયબર સલામતી, જાગૃતિ અને ટેકનોલોજી આધારિત પોલીસિંગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે। સત્તાવાર યાદીમાં જણાવ્યા અનુસાર આ અભિયાનનો હેતુ સામુદાયિક જોડાણ, ટેકનોલોજી આધારિત દેખરેખ, પીડિતો સુધી પહોંચ, સાયબર જાગૃતિ અને ઝડપી કાનૂની કાર્યવાહી દ્વારા મહિલાઓ અને બાળકોને સાયબર ગુનાઓથી બચાવવાનો છે। આ અભિયાન અંતર્ગત 25 લાખ નાગરિકોને સાયબર સુરક્ષા અને જવાબદાર ડિજિટલ વર્તન અંગે શિક્ષિત કરાશે। 10,000 શાળાઓ અને 1,500 કોલેજોમાં સાયબર જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજાશે, જ્યારે 1 લાખ કિશોરીઓને સાયબર સ્ટોકિંગ, ઓનલાઈન સતામણી, ડિજિટલ પ્રાઇવસી અને સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ વપરાશ અંગે જાગૃત પણ કરાશે। ભાવનગરના પ્રવાસે રહેલા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે સરતાનપર પ્રાથમિક શાળામાં આજે વહેલી સવારે વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનો સાથે યોગાભ્યાસ કર્યો। તેમણે યોગ અને પ્રાણાયામને જીવનનો અભિન્ન ભાગ બનાવવાનો અનુરોધ કર્યો। તેમણે ઘોઘા તાલુકાના કરડા ગામે પ્રગતિશીલ ખેડૂત કાળુભાઈ સોલંકીના પ્રાકૃતિક મોડલ ફાર્મની મુલાકાત લઈ વિવિધ પાકોનું નિરીક્ષણ કર્યું. શ્રી દેવવ્રતે ખેડૂતો સાથે આત્મીય સંવાદ સાધ્યો તેમજ પરંપરાગત

0: रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 02612236209।
1: ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग।
0: सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।

0: आया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शुरू में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। यह है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।
1: विकसित भारत 2047 ना संकल्प साथे गुजरात शिक्षण में गुणवत्ता की नवी दिशा तरफ आगळ वधी रह्यु छे। निपुण गुजरात अभियान नवा राज्य अभ्यासक्रम अने स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अश्योरेंस फ्रेमवर्क SQAAF द्वारा शालाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षण ने वधु सशक्त बनावामां आवी रह्यु छे। गुणोत्सव शिक्षण में श्रेष्ठता की नवी ओळख बनी रह्यु छे। विकसित गुजरात ना पाया मजबूत बनावतो गुणवत्ता सभर शिक्षण, गुणवत्ता युक्त शिक्षण, उज्ज्वल भविष्य। शिक्षण विभाग, गुजरात सरकार।
2: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: काम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है, भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था, ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं ना, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खुश होते हैं और आनंद का जो आपस में
0: क्षण
1: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है। सोनाली,
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम तकदीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके घरों में। तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
0: देखिए, जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है, कुछ कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है।
1: जी, तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए,
1: गीत सुनना चाहिए,
0: तो सुनते हैं गीत।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तो दीपा, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
1: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश के प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
0: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है, और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है, और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
1: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार हैं। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहां हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।

0: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो
1: जाती है
0: जी। और तकदीरा बेगम नक्शी काथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है, तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था। और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक काथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना,
1: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है, लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे, लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने ओस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की काथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जा करके वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
0: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन काथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके आजीवन सफर की नींव रख दी। यानी कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पर शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कर दिया
1: जी। और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत उनकी मदद कर रही हैं। उनका मानना है कि पारंपरिक कलाओं के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता हम महिलाएं पा सकती हैं, अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
0: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपनी इस कारीगरी से इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वह कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
0: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने, तकदीरा बेगम के पति ने, उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
1: बिल्कुल, अपने लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
0: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
1: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी, और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये इस प्रकार की कढ़ाई।
0: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
1: गीत सुनेंगे,
0: तो एक गाना सुनते हैं।
1: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फर...

0: फरमाना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे हंसी
0: हमारा
1: मजाक
0: चेहरा
1: में
0: वैसा
1: बोलते
0: ही
1: हैं,
0: हो जाए।
1: वैसा ही हो जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं
0: हाँ,
1: जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
0: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया, अब वो
1: हाँ
0: ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूँ, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की।

0: ये तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो इज्जत करता ही
1: वैसे दीपा,
0: नहीं।
1: पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
0: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो अब ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
1: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो
0: हाँ
1: फोटोज,
0: बिल्कुल,
1: ये अनगिनत यादें होती है ना,
0: बहुत
1: और
0: सारी
1: कुछ
0: जी।
1: तस्वीरें तो ऐसी होती नहीं जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है, हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं,
1: जी।
0: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं, तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं, अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो
1: और फिर
0: जाता है, और
1: उस
0: फिर वो बातें
1: वक्त,
0: पता नहीं कहाँ
1: हाँ,
0: तक चली
1: और
0: जाती
1: उस
0: हैं।
1: वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं, है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: ना, कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारे सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है, तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे, यानी कितनी
0: बिल्कुल।
1: सुंदर यादें, है ना।
0: और एक संदेश और कहता है सोनाली कि एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है, वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
1: एक साथी लिख कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता, उस दिन मैं भी अपने अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है, तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था, तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी, वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात।
0: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं, बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
1: एक साथी कहते हैं कि भाई, मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना, फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था। अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको वो फोटो जरूर दिखाता।
0: जी, कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे,
1: अब गाना सुनेंगे।
0: चलिए।

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया है अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है,
1: एहसास तो वही करा रहा है।
0: और वो जो है ना सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवा चल पड़ता है, बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं, और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं, शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक, चलिए।
2: ઓલા ચીમનની વાત સાંભળીને
3: માછીમારી કરતા એને દરિયામાં બેનામી નશીલા પદાર્થોની જાણ તુરત જ મરીન પોલીસને કરી દીધી।
2: ગાંજો, અફીણ, કોકેન, એમડીએમએ જેવા નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી કરવાના ગુનાઓમાં એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનેગાર વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી અને ધરપકડ થઈ શકે છે। અને આપણને કોઈને પણ દરિયામાં કોઈ શંકાસ્પદ બોટ, વિદેશી કે અજાણી વ્યક્તિ કે બેનામી ડ્રગ્સ નજરે ચડે તો ચીમનની જેમ તરત જ ગુજરાત મરીન પોલીસને 1093 પર જાણ કરવી। આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી। ગુજરાત મરીન પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है, उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ, और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता

0: फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है और पूछता है, दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था? कितना
1: ये
0: मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपने यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं
0: जी
1: तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, और एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़
0: जी
1: पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है वो इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है,
0: जी
1: इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है, और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो
1: बिल्कुल।
0: हमारा अच्छा ही चाहेंगे, और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुनबा ही इकट्ठा हो जाया करता था,
1: जी
0: और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी
1: बिल्कुल।
0: भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले
0: मदद मिले,
1: बिल्कुल,
0: सहयोग मिले।
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ
1: एक्सपेक्टेशन।
0: बटाए।
1: हाँ
0: इन
1: ये
0: पुराने
1: वाली
0: जमाने में ऐसा
1: अपेक्षा
0: होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: नहीं,
0: सिर्फ
1: ऐसा
0: लड़कियां
1: नहीं
0: ही
1: होता
0: काम
1: था।
0: करते थे।
1: हाँ लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र हैं, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है, और इसे कोई गलत या बुरा नहीं मानना
0: जी
1: चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीज़ों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं, तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी, उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है, लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी। आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपने ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं। माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया है उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है। अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय में माता पिता खुद ही पसंद करते थे, तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे, तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से इन्हें जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पा रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपनी ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है, लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि थोड़ा सा हमें जान पड़ताल थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी के उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए यानी जीवन साथी नहीं रहे तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल, और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना बहुत जरूरी आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती, न सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा पूरी कर लेती
1: कर सकती है
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे
0: उस परिवार
1: परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, यानी पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे हम, एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुन ले, एक
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना?
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में हैं भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो है,
0: है ना? हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है, या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह के कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन, जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती है, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है। दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को, कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा है, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो बात करी ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी, जो गादी होती है वो और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि वो शरीर को पूरी तरह से
0: आराम
1: सपोर्ट दे और आराम दे।
0: और अब गाना सुन ले,
1: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ, उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान, advantages and disadvantages of technology. आज की 21वीं शताब्दी में हम टेक्नोलॉजी के जिंदगी में जी रहे हैं. आज तकनीक के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है. परिवहन के लिए हम कार, बस, मोटरसाइकिल, प्लेन, ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. अपने मित्रों, परिवार से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं. मनोरंजन के लिए अब तो एलईडी टीवी हमारे पास है. रसोई में खाना, ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन चूल्हा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं. घर की सजावट के लिए आज अनेक तरह के आधुनिक तरह के लाइट्स का इस्तेमाल होते हैं. गर्मी सर्दी के मौसम में राहत देने के लिए अब एसी, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बहुत प्रचलित हो गया है. दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हर घर में एसी रहना कोई बड़ी बात नहीं है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज विज्ञान की मदद से टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है. अब हमको बिजली, टीवी, पंखा, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे आधुनिक चीजों की आदत हो गई है. हम इसके बिना नहीं जी सकते हैं. हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित टेक्नोलॉजी उपकरण और सेवाएं, दैट इज कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूज बाय अस, घरेलू उपकरण, पंखा, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक पानी का मोटर, इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली सप्लाई, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घरेलू काम के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, कैमरा, संचार के लिए इंटरनेट सेवा, मनोरंजन के लिए टेलीविजन, सिनेमा, कपड़े धोने और सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, ट्रेन, एरोप्लेन्स, संचार यानी बात करने के लिए फोन, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, रसोई घर के लिए ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन स्टोव, स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाएं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकी और सेवाएं जैसे एक्सरे मशीन्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स.

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227030।

अब विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के कोर्स ऑनलाइन ही कर सकते हैं। इस तरह घर बैठे शिक्षा पाना संभव हुआ है। आज अनेक वेबसाइट पर लोग पढ़ाने का काम करते हैं। विद्यार्थी घर बैठे वीडियो देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। अब महंगी फीस देकर ट्यूशन कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्री कॉलिंग और फ्री वीडियो की सुविधा भी है। आज कई नेटवर्क्स कम शुल्क में अच्छी और फ्री वीडियो और कॉलिंग सुविधा दे रही है। आजकल हम अपने मित्रों प्रियजनों से असीमित मात्रा में बात कर सकते हैं। पहले ये संभव नहीं था क्योंकि फोन सेवाएं बहुत अधिक महंगी थी। अब हम वीडियो फ्री में अपने फोन या कंप्यूटर में देख सकते हैं। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं। घर का काम हुआ आसान। अवन, मिक्सर, ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, इंडक्शन चूल्हा जैसे उपकरणों ने रसोई का काम सरल बना दिया है। आज की गृहिणी यानी होम मेकर्स वॉशिंग मशीन से कपड़े धोती है, इस तरह उसकी मेहनत बचती है। घर में रोशनी, अब एलईडी तकनीक वाले बल्ब बाजार में आ गए हैं जो बहुत कम बिजली लेकर अधिक रोशनी देती है। इस तरह बिजली की बचत होती है और देश के गांव-गांव में बिजली जा रही है। लोगों को बिजली के खर्चे में बहुत बचत हुई है। अब देश में अधिकतर महिलाएं गैस पर खाना पकाने लगी है, इससे उनको धुआं नहीं लगता है, उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से गैस के नए भंडार की खोज हुई है। गोबर और कचरे से भी रसोई गैस बनाने की तकनीक बनाई जा रही है। सीएनजी गैस के इस्तेमाल आजकल हर मेट्रो सिटी में बस और अन्य वाहनों में हो रहा है, इससे वायु प्रदूषण कम हुआ है। आजकल डेंगू, मलेरिया, खासकर चिकनगुनिया, कैंसर, ओवेरियन डिजीज, टीबी, एस्मा, इनफर्टिलिटी और कई सारे डिजीजेस हो रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में रोज नए नए शोध और खोज हो रही है, इससे हमें बहुत लाभ हुए हैं। चिकित्सा की नई टेक्नोलॉजी आ जाने से भारत में मृत्यु दर में गिरावट आई है। दैट मीन्स द डेथ रेट हैज गॉन डाउन।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: तो दोस्तों, इसके नुकसान भी है। आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी के नुकसान ये है कि हिंसा, खून खराबा वाले वीडियो गेम आजकल हर बच्चे खेल रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, मगर इसके नुकसान भी बहुत है। आज छोटे बच्चों को भी इंटरनेट की लत लग गई है। आजकल बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सारा दिन फोन या कंप्यूटर पर ही चिपके रहते हैं। बच्चे घर के काम और जिम्मेदारी से भी बचने लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर सारा समय नष्ट कर देते हैं। अपने कीमती समय का इस्तेमाल अगर बच्चे पढ़ाई में करें तो उनको बहुत फायदा होगा, उनका भविष्य उज्जवल बनेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे ज्यादा वक्त चैटिंग और वीडियो देखने में बिताते हैं, इस तरह उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आजकल हैकर्स हमारे इंटरनेट बैंक अकाउंट के खाते को हैक करके पैसे की चोरी करते हैं। आए दिन ऐसी खबर आती रहती है, कुछ चोर ATM कार्ड बदलकर क्लोन बनाकर हमारे पैसे चुरा लेते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी ने भी हमारी समस्याएं बढ़ा दी है। आज लुटेरे और चोर हमें फर्जी कॉल करके परेशान करते हैं, हमारा बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, OTP नंबर पूछते हैं। आज के लम्हे प्रोग्राम में हमने आपको टेक्नोलॉजी के अनेक फायदे और नुकसान बताए हैं। हमें इसका इस्तेमाल सोच समझ कर मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। वेल, with this message, this is Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, bye.
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। I repeat 09515

7239 और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट, feedback@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते बंधुवर।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गुलमंडी छत्रपति संभाजीनगर से जगन्नाथ बसे बंधु बोल रहा हूँ साहेब जी।
0: बोलिए बंधु साहब, कैसे हैं?
1: बस पात्रीकर जी, बस देखो हम यहाँ है और आप मुंबई के स्थित जगहों पर है।
0: जी
1: हम गुलमंडी से बात कर रहे हैं, आप मुंबई से बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
0: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
1: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है,
0: क्या बात है।
1: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, घाट तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
0: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का आपका जो फरमाइशी गाना होगा वो भी ऐसा ही होगा
1: अरे
0: जो
1: साहब, वो तो
0: मौसम की
1: गाना
0: बात
1: ऐसा
0: करे।
1: है, मैं बता रहा हूँ मौसम के हिसाब से है। ऐसा गीत मैं सुनना चाह रहा हूँ, 1943 में एक फिल्म बनी थी तानसेन, इसमें स्वयं कुंदनलाल सहगल साहब और
0: हाँ
1: खुर्शीद ये कलाकार भी थे और गायक भी।
0: सहगल
1: अब तो
0: साहब,
1: बहुत कठिन है ऐसा कार्यक्रम होना, तो साहब फिल्म इतनी चली थी है और इसके अंदर के गीत है खुर्शीद जी ने गाया है और KL सहगल साहब ने गाया है, और दृश्य इतना सुंदर है बंधु जी, मैं क्या बताऊं ये।

0: फिल्म जितने बार भी देखे होंगे आपने या ना देखे होंगे तो देखना जरूर
1: जी।
0: क्या सुंदर अभिनय है कुंदन लाल सहगल साहब का और खुर्शीद का स्वयं अभिनेत्री
1: जरूर जरूर
0: रोल है। घटा घन घोर घोर मोर मचाए शोर
1: मोरे सजन आ
0: जाना, क्या गीत है जितने बार सुनो ऐसा लगता आग बंद करो और बैठ जाओ तो सब नए रम्य दृश्य हम बैठ के निसर्ग की सृष्टि में देख रहे हैं सुन रहे हैं। तो ये गीत सुनना हम पसंद करेंगे साहब जी। और इसके जो है संगीतकार खेमचंद प्रकाश और गीतकार दीनानाथ मधुक।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं तानसेन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जयंत
0: नमस्कार।
1: जी, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल हम ठीक हैं, आप कैसे हैं?
1: बस मैं भी आपकी दुआ से ठीक हूँ, और यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि विविध भारती की टीम जहाँ रहे खुश रहे सलामत रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बताइए, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और हमारे लिए ऐसे ही प्रोग्राम सजा कर लाते रहिए जैसे आप सजा कर लाते हो।
0: जी, आपका नाम तो बताइए।
1: जी, मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल।
0: और साहिल कैसे हैं?
1: बस बढ़िया हूँ सर। श्रीनगर का
0: अच्छा,
1: मौसम तो बहुत ही अच्छा है, आजकल टूरिस्टों का भी रश लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो चुकी है।
0: जी। और बताइए, विविध भारती से कब से है आपका जुड़ाव?
1: विद भारती से जुड़ा है 2005 से सर।
0: अच्छा जी, 21
1: जी
0: साल हो
1: सर,
0: गए।
1: जी बिल्कुल
0: तो उससे पहले क्या सुनते थे? अच्छा
1: जी, जब से होश संभाला है सर विविध भारती सुना है तब से।
0: अच्छा अच्छा सबसे ज्यादा आप क्या सुनते हैं, सिर्फ फिल्म के गाने या इसके अलावा भी कुछ?
1: मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुनता हूँ जो 4 बजे आता है पिटारा, उसमें
0: ओके।
1: हर दिन एक नया प्रोग्राम होता है सर। कभी
0: हाँ
1: सेलुलॉइड के सितारे, कभी डॉक्टर होता है, कभी कभार आप किसी सेलिब्रिटीज को लाते हो तो उनकी जो जिंदगी में उन्होंने किया होता है तो उनके बारे में हमें पता चलता है सर।
0: जी। और फिर हफ्ते में एक दिन हेलो फरमाइश भी आता है, जिसके लिए
1: जी
0: आपने
1: बिल्कुल
0: कॉल
1: सर,
0: किया है।
1: बिल्कुल
0: बताइए क्या सुनना
1: बिल्कुल
0: चाहते हैं?
1: बिल्कुल। और आपने एक प्रोग्राम फिर से चालू किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मन चाहे गीत।
0: तो आपने खत
1: जी
0: भेजे
1: सर,
0: कि नहीं पंचायत गीत के लिए?
1: जी सर, मैंने खत भेजा है सर।
0: चलिए बताइए, आज के लिए कौन सा गीत आपने
1: जी,
0: सेलेक्ट
1: फिल्म
0: किया?
1: का नाम है डोली, आशा जी की आवाज में। आज मैं देखूं जिधर जिधर, ना
0: अच्छा,
1: जाने क्यों उधर उधर, मुझे दो दो चार नजर आए आए
0: ओहो
1: मेहताब उधर मेहताब।
0: बढ़िया गाना है, आपको सुनवा रहे हैं डोली फिल्म का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। मेरे
0: बोलिए राकेश जी।
1: बात में कॉल लग गया, मेरा बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आपके सभी प्रोग्राम को सुनता हूँ और आप जितने भी बात के प्रोग्राम आते हैं हेलो फरमाइश तो सुनते हैं, और मन चाहे गीत भी आपने शुरू किया वो भी अच्छा लगता है। सभी प्रोग्राम जो है हम विविध बात की सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा जान करके। और राकेश जी ये बताइए, शिमला में क्या करते हैं आप?
1: शिमला में तो अभी हम तो घर पे रहते हैं और सेब की जो है बागवानी वो करते
0: अच्छा
1: हैं, और अभी हमारे जो सेब के जो बाग है छोटे छोटे हैं, छोटे तो क्या है अभी तो सैंपल आ गए हैं, छोटे छोटे फूल आना शुरू हो गए हैं सेब के,
0: हाँ।
1: और अब जो है जुलाई तक जो है हमारे सेब जो है पूरे भारत में तो निकली आ जाएगी।
0: अच्छा, साल में एक बार आते हैं
1: सेब
0: पेड़ों के
1: तो
0: फूल?
1: साल में एक बार आते हैं, और कहना चाहता हूँ कि जो आप तक जो सेब मिलते हैं और स्टोरेज की वजह से जो है मिल जाते हैं तो तब जाके ये पूरे भारत में पहुंचते हैं, कई सेब जो होते हैं जो स्टोरेज की हो जाते हैं।
0: अच्छा, आपके बाग के
1: तो
0: सेब जो है वो कहाँ कहाँ तक जाते हैं?
1: हमारे सेब जो है हमारे स्थानीय मंडी में भी जाते हैं, अगर स्थानीय मंडी में ज्यादा होते तो फिर विदेश भी भेज देते हैं, और बम्बई में भी इसकी जो है डिमांड ज्यादा रहती है, महाराष्ट्र और बम्बई में।
0: अच्छा, तो हम जो अब सेब खा रहे हैं या उसमें हो सकता है कोई एक सेब आपके बाग से भी आया हुआ होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि सेब तो पहचान कैसी होती है, क्योंकि सेब तो कश्मीर से भी आते हैं और हिमाचल से भी आते हैं, लेकिन
0: जी
1: ये है कि कश्मीर से लेट आते हैं, हमारे हिमाचल के जो सेब होते हैं वो जल्दी आ जाते
0: जल्दी
1: हैं।
0: आ जाते हैं।
1: मैं
0: तो
1: कहना चाहता हूँ कि शिमला जो है एक पर्यटक
0: बिल्कुल
1: केंद्र भी है,
0: बिल्कुल
1: और हमारा कोटखाई क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, और मैं कहना चाहता हूँ मैं छोटे से एक गांव में रहता हूँ, हमारे गांव का नाम है गुंडा और तहसील कोटखाई, और बहुत अच्छा मतलब क्षेत्र है, मैं 400 लोग हमारे गांव में रहते हैं
0: अच्छा जी, बताइए आज
1: जी।
0: के प्रोग्राम के लिए
1: तो
0: आपने कौन सा गीत चुना है?
1: आज मुझे मोहब्बत मूवी का गाना सुना है और आईना बता कैसे ये गाना सुनना है जी।
0: राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपको सुनवा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते सर। जी
0: नमस्ते।
1: सर, मैं सारी कराची से बात कर रही हूँ, बिजौरा से। सर,
0: बिजौरा, ये गांव कहाँ पर है आपका?
1: सागर के पास में पड़ता है, सागर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: और सागर मध्य प्रदेश में सारिका राजपूत क्या करती हैं?
1: सर अभी तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को संभालती हूँ।
0: बहुत बड़ा काम है ये भी, और इसके साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए आप रेडियो सुनती है ना?
1: जी सर, विविध भारती सुबह सुबह चालू होती है तो 11 बजे रात में बंद होती है।
0: अच्छा, और इसमें से सुबह से लेकर रात तक कौन सा प्रोग्राम आपको ज्यादा पसंद है?
1: सर मुझे छाया गीत ज्यादा अच्छा लगता है, और आज के मेहमान, तत्काल, सब सुनती हूँ मैं। हालू फरमाइश भी सुनती हूँ।
0: जी, चलो, बहुत अच्छा लगा जान के आप इतना पसंद से, इतने चाव से सुनती हैं विविध भारती। बताइए, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सर मुझे आज की टू का गाना सुनना है, मैं चाहूँ ना।
0: ये रहा आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश।
1: क्या लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है? लम्हों का इश्क नहीं सदियों की हिफाजत है, कैसे करूं शिकायत हर सांस को तेरी चाहत है।
0: ओ हो, क्या बात है। और ये शेर कहने वाले हैं कौन? आप क्या नाम बताइए?
1: सर मैं उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: मैं गीत सुनूंगा, फिल्म का नाम रहेगा साजन, और इसमें जो गीत मैंने चुना है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: अच्छा जी, ये गाना आपने क्यों चुना, कोई खास बात है?
1: जी बिल्कुल खास बात है सर, ये गीत मुझे अच्छा लगता है और इसके वर्ड ऐसे हैं, अगर एक एक वर्ड को हम समझते हैं तो काफी अच्छा, दिल को सुकून देता चला जाता है।
0: चलिए तो फिर आपको सुनवाते हैं साजन फिल्म का गाना अमरदीप जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार, मैं पप्पू
0: नमस्कार
1: ठाकुर
0: जी,
1: काटिया थाना जिला गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। भैया
0: बोलिए पप्पू जी, कैसे हैं?
1: जी अपना बताइए।
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, बस श्रोताओं के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग जगह से आप
1: जी
0: लोग
1: जी
0: फोन करते हैं, तो आपके
1: जी जी
0: इलाके में मौसम कैसा है? बारिश पड़ रही है?
1: जी सर, आज कितने दिनों के बाद से आज बारिश हुई है सुबह में। और मैं शहरी इलाका नहीं है, गांव का इलाका है हमारा, एक छोटा सा जिला है।
0: जी, पप्पू जी वहाँ गांव में आप क्या काम करते हैं बताइए।
1: गांव में सर मैं तो अभी बाहर गांव में काम करता था, अभी घर पे आया, 1 साल हो गया हमको। मैं दुबई, कतर और कांगो, एक अफ्रीका जगह है ना, वहाँ पे
0: जी
1: मैं काम किया है,
0: जी जी
1: मैकेनिक का काम मैं करता हूँ सर।
0: अच्छा, तो फिर अब पिछले साल भर से
1: जी
0: आप घर में हैं, तो यहीं अपना
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: नया काम धंधा शुरू करने का इरादा है?
1: जी हमारा एक सैलून का शॉप है, हमारे पिताजी चलाते हैं, तो कभी काल हम चले जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक सपना था सर कि मैं कभी वेद भारती में मेरा कॉल लग जाए, हेलो फरमाइश में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ट्राई करता था।
0: क्या बात है, आज सपना पूरा हो गया आपका।
1: मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 2005-06 से जब रेडियो पे मैं सुनता था, हमारे बड़े पापा के पास एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था छोटा वाला, उसको हम शॉर्ट वेव पे उसको सुना करते थे। उस समय से मैं वेद भारती को बहुत चाहता हूँ सर, बहुत चाहता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, अभी मोबाइल पे सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया आपने,
1: जी, न्यूज एनआईआर वाला।
0: बहुत बढ़िया है।
1: कोई भी ऐसा फरमाइश नहीं गया हो जो मैं नहीं सुना हूँ, और ऐसा नहीं होता तो रिकॉर्डेड में मैं सुन लेता हूँ उसको। फिल्म
0: बताइए पप्पू जी, आज के लिए आपने कौन सा गाना चुना है?
1: का नाम है पत्थर के सनम, मनोज कुमार सर पे फरमाया गया है, वो गाना है पत्थर के सनम तुझे मैंने मोहब्बत का खुदा जाना, रफी साहब की आवाज में है।
0: चलिए, तो आपके जो कॉल लगने की खुशी हो रही है आपको, उसके और दुगना कर देते हैं।
1: बहुत
0: तो सुनिए अपनी पसंद का गाना
1: हमारी
0: पत्थर के सनम फिल्म से।

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हैं आप सर?
0: हम अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं और अपना नाम बताइए पहले। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं फहीम बोल रहा हूँ, श्रीनगर कश्मीर से।
0: फहीम भाई बोलिए।
1: जी सर, आज आपसे पूरे 2 महीने के बाद बात हो रही है। हम
0: जी जी जी
1: इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे 2 महीने कंप्लीट हो जाएं और हम आपसे बात करें और विविध भारती के चैनल VBS पे अपने पसंद के नगमे सुनें।
0: जी जी बाकी पूरे देश
1: जी
0: में
1: सर,
0: तो गर्मी का मौसम खत्म हो के अब बारिश शुरू होने वाली है, बहुत लेट
1: जी
0: हालांकि आई है। मगर श्रीनगर में कैसा है मौसम?
1: श्रीनगर में इन दिनों थोड़ी सी गर्मी है। यहाँ पे 40 दिनों का एक समय होता है, 30 जून से लेकर जो ना फुल मंथ जुलाई तक रहता है। इन 40 दिनों को हम कश्मीरी में बहरात बोलते हैं।
0: अच्छा
1: बहरात के समय यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, और वैसे ही यहाँ पे 21 दिसंबर से लेकर फुल मंथ जनवरी तक 40 दिनों का एक और समय होता है, उसको हम कश्मीरी में चिलाई कलान बोलते हैं।
0: अच्छा
1: गर्मियों के 40 दिन बहरात और सर्दियों के 40 दिन चिलाई कलान। ये 40 दिन 40 दिन जो ना हमारे यहाँ पे बहुत स्पेशल होते हैं, गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों के हिसाब से। तो अभी हम ऐसे समय में चल रहे हैं जो पे अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं बारात में चल रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों के बाद बच्चों की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में छुट्टी रहेंगी।
0: अच्छा तो ये बहरात में क्या कुछ खास, कुछ रवायत होती है, कुछ त्योहार होते
1: बारात
0: हैं?
1: के समय में जी, त्योहार भी होते हैं बहुत सारे। बारात के समय में यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है, बच्चों को सब छुट्टियाँ मिलती है। तो हम कश्मीरी लोग भी जैसे आपके वहाँ पे आते हैं घूमने, हम भी यहाँ पे
0: जी
1: घूमने निकलते हैं बच्चों के साथ। तो बारात के समय हमें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा ठंड ही रहती है, मौसम ठंडा ही रहता है। तो अभी हम गर्मियों को इंजॉय कर रहे हैं बारात के समय, फैमिली के साथ,
0: फिर
1: फ्रेंड्स
0: भी
1: के साथ। हाँ
0: आपकी नज़र से वो
1: जी
0: गर्मियां हैं, मगर फिर भी एवरेज टेम्परेचर तो वहाँ 20 से कम ही रहता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी, नॉर्मली 25-30 तक हो जाता है, और जिस दिन 30 होता है उसी शाम बारिश भी आती है। ये हमारे यहाँ पे स्पेशल एक बात है, जिस
0: ओ
1: दिन
0: अच्छा
1: 30
0: अच्छा
1: होता है तो उसी शाम हल्की सी बारिश भी आती है, अगले
0: जी
1: दिन फिर से वही नॉर्मल 25-27 तक जाता है।
0: जी मुल्क के दूसरे इलाकों के लोग घूमने जाते हैं श्रीनगर, मगर श्रीनगर के रहने
1: हाँ जी
0: वाले
1: हाँ जी,
0: कहाँ जाते हैं घूमने? आप कहाँ आते हैं पूरे देश में?
1: हमारे यहाँ पे स्पेशली कुछ जगहें हैं कश्मीर में ही है, दूध पथरी नाम की जगह है, वहाँ पे हम जाते हैं। सोनमर्ग भी जाते हैं, पहलगाम भी जाते हैं,
0: नहीं
1: गुलमर्ग भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है आपके यहाँ, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जब घूमने निकलते हैं तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि देश के किस इलाके में जाए, क्या देखें?
1: हम ज्यादातर पसंद करते हैं एक तो बैंगलोर जाना, और दूसरा जो है ना हमारा थोड़ा मुंबई भी जाते हैं, और केरला भी जाते हैं यहाँ के लोग, और कोलकाता भी जाते हैं। देश के बहुत सारे, सबका टेस्ट अलग अलग है,
0: जी।
1: बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। जब आउट ऑफ स्टेट जाते हैं तो इन्हीं जगहों पे जाना पसंद करते हैं। गोवा भी जाते हैं यहाँ से काम
0: चलो
1: के सिलसिले में भी और घूमने के सिलसिले में भी।
0: वाह वाह, बड़ा अच्छा लगा जान करके। और आपने टेस्ट
1: हाँ जी
0: सबका अलग होता है कहा, तो ऐसे ही म्यूजिक का टेस्ट सबका अलग होता है ना? तो
1: हाँ
0: अगर
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक की बात की जाए, फिल्म संगीत की बात की जाए, तो आपका टेस्ट कैसा है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं दोनों नगमे पसंद करता हूँ, पुराने भी सुनते हैं नए भी सुनते हैं। लेकिन अभी का जो ये हमारा अभी ट्रिप चल रहा है, हम भी घूमने निकले हैं,
0: जी।
1: तो मुझे एक वीर ज़ारा का नगमा बार बार याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। लता मंगेशकर और उदित नारायण जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा नगमा है। तो मैं यही हम अपने विविध भारती के चैनल पे सुनना चाहेंगे, और साथ में जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं जो अभी घूमने निकले हैं, वो कश्मीर के नज़ारे देख कर यही बोल रहे होंगे आपस में, अरे यार ये हम आ गए हैं
0: आ गए हैं
1: कहाँ।
0: कहाँ, क्या बहुत
1: जी
0: ही प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत को चुनने के लिए, और आपको हम सुनवा रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म से यही गीत।

0: हेलो, फरमाइश।
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव।
0: मनोज नामदेव जी, कैसे हैं?
1: बस सर बढ़िया है, जब आपका आशीर्वाद है भगवान कृपा से मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले का भगवान का आशीर्वाद है, उसी की दुआ से सब कुछ चल रहा है ना?
1: बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हो।
0: और मनोज नामदेव जी, आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: जी जी बिल्कुल सर, कामकाज बढ़िया चल रहा था। मैं अपने शॉप पर काम कर रहा था और फोन लगा रहा था, एक हाथ से काम कर रहा था तो लगाते लगाते लग गया फोन। और कहें कि सर आकाशवाणी मुंबई सर इतना अपार प्रेम हो चुका है, सर इतना अपार प्रेम हो चुका है कि रह ही नहीं सकते, जे कहो सर।
0: कौन सा प्रोग्राम सुने बगैर नहीं रह सकते?
1: सर जी आपके सारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सुबह से रात 11 बजे तक आपका कार्यक्रम बराबर सुनते हैं सर।
0: जी, तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग इरा के गाने हम बजाते हैं, अलग अलग युग के गाने बजाते हैं, है ना? पुराने
1: बिल्कुल
0: हैं
1: सर। और सोमवार को आता है कार्यक्रम सेहतनामा,
0: जी,
1: और शनिवार को और रविवार को आपका मनचाहे गीत। इतना अच्छा कार्यक्रम लगता है सर, इतना
0: जी,
1: अच्छा कार्यक्रम कि मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं आपको, और जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना आप पसंद करते हैं विविध भारती के अलग अलग कार्यक्रमों को। और अब ये उत्सुकता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने किस गीत की फरमाइश लिख रखी है अपने डायरी में?
1: बिल्कुल सर, डायरी में लिख रखी है, मूवी का नाम है विजय पथ और गाने की बोल रहेंगे। आइए आपका इन

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा गर्वबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारा फोन नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। फोन नंबर एक बार फिर नोट करें 02228670288 और दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया जयंत पात्रिकर के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 02612236209।
1: ओ मेरे दिल को टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। ओ मेरे दिल को टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग।
0: सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।
2: अरे

कहते हैं नफरत आग लगा देती है और प्रेम की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। जिनके दिलों में नफरत होती है उनकी जुबां सिर्फ आग ही उगलती है और ये आग सिर्फ धुआं ही छोड़ती है। धुआं दर्द बयां करता है और राख कहानियां छोड़ जाती है।

हमारा प्यार जैसे जंगल की आग था, और कहते हैं अगर इश्क की आग दिल में लगी हो तो सुकून कभी मिलता नहीं है। अब आग को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। चूल्हे में लगी आग खाना पकाती है और पेट की आग को शांत करती है, लेकिन यही आग जब रिश्तों में लग जाए तो घर जलकर खाक हो जाते हैं। यानी आग का अपना एक गुण है, आग ठंड में राहत देती है और यही आग गर्मी में झुलसा देती है। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम। ये सीने की आग है साहेब, यहां पानी का क्या काम। किया हमने महज इश्क ही तो था कमबख्त, किस्मत ही निकली बेईमान।

0: छाया गीत कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सूरत एफएम पर तो गुजरा हुआ जमाना आता है बार बार, थई जाओ सवार सुरीला समयनी पाखों पर, करिए गुजरा हुआ जमाना नी सुरीली सफर। सोमवार थी शुक्रवार सांजे
2: 6:05
3: ऑन सूरत एफएम 101.1 तेमज न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध।
4: 101.1 मेगाहर्ट्ज़ सूरत एफएम।
5: हेलो, आकाशवाणी सूरत एफएम स्पीकिंग।
6: हाँ सूरत एफएम,
5: कौन बोलो?
6: हाँ मैडम, हूँ एक व्यापारी बोलू छू।
5: ओके, केवो चाले छे आपनो व्यापार?
6: चाले राके बेन, बहु मजा नथी आवती।
5: चलवो नहीं, धमधमात दौड़ाओ आपना व्यापार ने, अमारा असंख्य श्रोताओ सुधी पहुँचाड़ो आपनी वात। जाहेरात आपो आकाशवाणी विविध भारती सूरत एफएम पर।
4: सूरत एफएम
5: अमारो फोन नंबर छे 2234450 અને 9428404140, અથવા તો ઈમેલ કરો suratfm101@gmail.com પર। આપની સમૃદ્ધિનો સારથી સુરત એફએમ 101.1

इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आग, जी हाँ आग, कुछ नहीं बोलती। वो अपने को समेट कर चुपचाप माचिस की डिबिया में पड़ी होती है, पर कभी कभी ना राख उड़ती है ना उठता है धुआं। कुछ रिश्ते बस चुपचाप जला करते हैं। हालांकि खुद को अगर हमने परिश्रम की भट्टी में झोंक दिया तो हीरा बनकर बाहर निकलते हैं, यानी ये आग आपको जलाकर खाक भी कर सकती है और यही आग कांच को हीरा भी बना देती है।

ये आग की बात है, तूने ये बात सुनाई है। ये जिंदगी की वो ही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। कहते हैं आँच केवल आग में ही नहीं पाई जाती, कभी एकांत में स्वयं के भीतर के तापमान को जांच कर देखना। भीतर का मौसम भभक रहा होता है कई बार, और मन उस आँच में सिकता रहता है, सिकता रहता है, धीरे धीरे धीरे धीरे। इन दिनों मौसम जैसे धुआं धुआं सा है, हर तरफ एक आग और फुगा।

आग को साधते हुए कई बार आग से खेल जाते हैं हम, और यही है वो आग, सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से, हाँ लक्षित नहीं होता है जीवन के ठंडे और धूसर राख भरे अवसाद के नीचे। हमारे भीतर भी एक आग बची होती है और इसी आग में प्यार और नफरत सिकते रहते हैं। इसी आग में जलते हैं सपने, ख्वाबों का जंगल भी इन्हीं लपटों से झुलस जाता है, और जंगल में फैली ये आग जल्दी बुझती भी तो नहीं।

0: क्या
1: और अब छाया गीत समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
3: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
2: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि,
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गाते नहीं, एक लाइन सुनाते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
3: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
2: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए तराने नए पुराने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तराने नए पुराने

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। विविध भारती पर हर शाम 4 बजे सजता है पिटारा। सोमवार को सेहतनामा, मंगलवार को सेल्यूलॉइड के सितारे, और गुरुवार को होता है
1: हेलो फरमाइश।
0: बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज।
2: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: और रविवार
3: उजाले उनकी यादों की।
0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक

0: हर रोज सुबह 7 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: सुरती सिजलर जहाँ तमे मानशो डिलिशियस स्वादों ने साथे मेलोडियस गीतों।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत सचिन देव बर्मन का था, फिल्म का नाम था तेरी घर के सामने। और अब लता मंगेशकर की आवाज गूंज रही है

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की बोल थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। शाम के 7:15:15 जय माला।
1: क्या कहा?
0: यूनुस खान के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत आपने सुना, और अब कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे भाई तया सांभळ्यु, आपणे दरियामां होईए तो आ इंटरसेप्टर बोट आपणी अने देशनी रक्षा करे छे।
2: गुजरात राज्यना दरिया किनारे कुल 27 इंटरसेप्टर बोट आपणी सुरक्षा माटे दरियामां सतत पेट्रोलिंग करे छे, अने आपणे पण तपास दरमियान जरूरी दस्तावेजो अने साची माहिती आपी तेमने संपूर्ण सहकार करवो जोईए। आपणने दरियामां के किनारे अजाणी बोट, व्यक्ति के शंकास्पद हिलचाल देखाय तो तरत ज 1093 पर कॉल करी मरीन पोलीसने जाण करवी जोईए। आपणी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पोलीस द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नवी आशाओ, नवा सपनाओ, नवा योगना शिक्षण नी नवी दिशा। राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 आधारित स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCF साथे गुजरात शिक्षण मां नवी दिशा तरफ आगळ वधी रह्यु छे। बाळकोना सर्वांगी विकास ने समर्पित आ अभ्यासक्रम ज्ञान, कौशल्य, मूल्यों अने सर्जनात्मकता नो समन्वय साथे छे। उत्तम शिक्षण, उज्ज्वल गुजरात ना ध्येय साथे स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क शिक्षण विभाग गुजरात सरकार नो एक मजबूत पगलू छे। शिक्षण विभाग, गुजरात सरकार।
4: आप सूरत में हो के सूरत थी दूर,
5: सूरत FM 101.1 ना तमारा फेवरेट प्रोग्राम्स
4: कदी नहीं रहे तमारा थी दूर।
5: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप द्वारा
4: हमेशा तमारी साथे।
6: फैंटास्टिक फन फॉर फैमिली
7: 101.1

0: असून येथे कार्यक्रम जयमाला.
1: आप हैं विविध भारती के संस्थापक.

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: तो चूंकि बात आपके दूरदर्शन से जुड़ी है और साथ ही आपके कला से भी जुड़ी बातें हैं, आप एक कलाकार हैं, आप थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और आप फिल्मकार भी हैं, आपने थिएटर पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि किस तरह का थिएटर आपने किया और साथ ही जो हिंदी के बड़े बड़े लेखकों के नाटक मंचित किए गए या मंचित आज भी किए जाते हैं, तो हिंदी साहित्य और समाज को बेहतर रूप से समझने में शौकिया रंगमंच की क्या भूमिका रही आपकी नजर में?
2: देखिए, ऐसा था कि हम तो कॉलेज में थे, तो बेसिकली क्या हुआ कि जब एक हमारा यूथ फेस्टिवल होता था कॉलेज में, तो उसमें कुछ लोगों को बुलाते थे भाई, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों ड्रामे में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो आ जाइए। तो हम तो थिएटर से दूर दूर से कोई मतलब नहीं था, तो मैं चला गया साथ में। तो मैंने कोई एक लड़का कोई कर रहा था किसी का रोल, वो कर नहीं पा रहा था, तो जो हमारे डायरेक्टर आए थे सिलेक्शन के लिए, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे,
1: जी एनएसडी से।
2: तो उन्होंने देखकर कहा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो फिर भी नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पीछे से जैसे जो मैंने कहा, भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे क्यों नहीं करते हो, कितनी बार कह चुके हैं सर
1: जी।
2: तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोला आप आके क्यों नहीं कर देते। तो मैंने पहले तो मना किया, फिर मैंने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसको करना है। तो मैंने उसको बताने के लिए वो किया और शॉर्टकट ये है कि जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया
1: जी।
2: उन्होंने कहा कि आप करेंगे ये रोल
1: जी जी।
2: ऐसे ड्रामे का इंटरेस्ट हुआ, फिर ये हुआ कि यूथ फेस्टिवल में मैं ड्रामा डायरेक्ट भी करवाता था डिफरेंट कॉलेजेस में। और उन दिनों तो हमारे बादल सरकार के विजय तेंदुलकर के
1: जी, जी।
2: जो नाटक थे वही हम करवाते थे। और एक मैंने प्ले करवाया था, मुझे याद है, बासी खबर। जी, तो काफी उसको अप्रिशिएशन मिला, अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से ड्रामे में रहे और फिर हम दिल्ली में नेशनल स्कूल

0: हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं प्रहसन सिलसिला बहानों का। लेखक हैं सुरेंद्र कौशिक, निर्देशक सुशील बैनर्जी।
1: हे भगवान, 7:30 बज गए, सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। लड़के ने आंखें सुजाली रोते रोते, रोए नहीं तो क्या करेगा भागा, कैसे स्कूल जा पाएगा कल वो बेचारा बिना जूते। और ये श्रीमान सिकंदर खुसट विलंबित जी उर्फ हमारे लेज लतीफ पति देव अभी तक नहीं लौटे।
2: सिकंदर भाई, सिकंदर भाई।
3: कौन कौन है? अरे भट भैया आप।
2: ना सिकंदर भाभी, सिकंदर भाई घर में ही होंगे ना? क्या हाल है अब नरेश बेटे का? अरे कैसी गिरी इमाम दस्ते की इतनी भारी मूसली पांव पर?
1: इमाम दस्ते की मूसली? हाय हाय, चुप चुप बोलो बट भैया, नरेश तो अभी अभी ट्यूशन पढ़ने गया है। अच्छा भला
2: ट्यूशन पढ़ने? तू नरेश बेटे को कोई चोट या फ्रैक्चर नहीं हुआ?
1: नहीं तो।
2: और सिकंदर भाई कहाँ है?
1: वो तो मैं आप ही से पूछने वाली थी, अभी तक नहीं लौटी है दफ्तर से।
2: दफ्तर से? मगर दफ्तर से तो वो 3 बजे ही निकल गए थे, छुट्टी लेकर नरेश बेटे के पाँव पर इमाम दस्ते की।
1: फिर वही इमाम दस्ते की मूसली? अरे भैया हमारे यहाँ तो इमाम दस्ता ही नहीं है, वो मरी मिक्सी है।
2: मिक्सी? इमाम दस्ता वो?
1: पर भट भैया बात क्या है, कुछ कुछ बताओ तो भट भैया।
2: अब क्या कहूँ भाभी, आज मिस्टर सिकंदर जब फिर देर से पहुंचे तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। एक हाथ में लंच बॉक्स और दूसरे में चप्पल।
1: चप्पल?
2: जी हाँ, और वो भी टूटी हुई। बुरी तरह हांफते हुए घबराए घबराए कमरे में दाखिल हुए।
4: शुक्र है सुपरिंटेंडेंट साहब नहीं है सीट पर, शायद आए भी ना अभी तक। फिर तो झट से 9:55 की हाजिरी लगा दूं। आए मर गए, मेरे नाम के आगे तो इतना बड़ा लाल चौराहा यानी कि क्रॉस लगा है।
5: सर तो आज भी आप पूरे 1 घंटे लेट आए हैं मिस्टर सिकंदर खुसट विलंबित।
4: सर वो
5: देखा मिस्टर भट्ट,
2: विलंबित जो ठहरे सुपरिंटेंडेंट साहब।
5: तो श्रीमान विलंबित जी,
4: जी
5: अब आज के दिन आपके विलंब का क्या कारण है?
4: जी सुपरिंटेंडेंट साहब बात ये है।
5: बोलो बोलो, मगर ध्यान रहे पिछले किसी बहाने को इतनी जल्दी रिपीट मत कर जाना।
4: जी जी मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सुपरिंटेंडेंट साहब।
5: अरे मगर क्यों, अभी तक तुमने ऐसा कोई बहाना रिपीट तो किया नहीं।
4: जी वो मैं समझा नहीं सर।
5: मैं तुम्हें वो सिलसिला याद दिला देता हूँ जिस पर तुम रोजाना बाकायदगी के साथ अमल करते आ रहे हैं।
4: कैसा कैसा सिलसिला?
5: अरे भाई बहानों का सिलसिला विलंबित जी, कल आप लेट इसलिए आए थे कि आपके पड़ोस में एक बुढ़िया की मौत हो गई।
4: जी हाँ जी हाँ।
5: और उसे कंधा देने वाले चौथे व्यक्ति सिर्फ आप ही थे।
4: जी हाँ।
5: क्योंकि बाकी आसपास के लोग सब तब तक अपने दफ्तर जा चुके।
4: जी हाँ जी हाँ, ये तो मेरा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था सर।
5: परसों आप इसलिए लेट थे कि आपने कुछ ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया अपने ससुर जी की पहली बरसी।
4: मिस्टर भट्ट माइंड योर ओन बिजनेस।
2: मगर सिकंदर भाई, अपने ससुर की पहली बरसी और तुमने खुद मनाई, तुम्हारे तो शायद 2-2 साले हैं।
4: मगर हाँ वो दोनों साले वो कनाडा गए हुए हैं, वहाँ शराब खाने के लिए कौन सा पंडित आएगा?
5: ओ आई सी।
4: जी सुपरिंटेंडेंट साहब, ऐसे में क्या मुझे वो धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए था?
2: जी हाँ सुपरिंटेंडेंट साहब, आखिर ससुर भी तो पिता समान ही होता है, जैसे पिता का श्राद्ध वैसे ही ससुर का, पत्नी का पिता अपना।

0: पिता।
1: आप चुप रहिए मिस्टर भट्ट। देख लिया सुपरिंटेंडेंट साहब किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग मेरी धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य परायणता का। क्या इनके यहाँ आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में कभी कोई नहीं मरा या कभी कोई नहीं मरेगा कब?
2: छी छी छी, इतने ओछे और घटिया शब्दों पर उतर आए तुम मिस्टर सिकंदर। एक तो आप लेट आए
1: तो इन लोगों को

0: लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। काम के प्रति तुम्हारे मन में कोई कर्तव्य भावना नहीं है?
1: नहीं।
0: चलिए चीफ के पास।
1: नहीं सुपरिटेंडेंट साहब, कर्तव्य की भावना नहीं होती तो क्या इतनी भयंकर स्थिति में मैं ऑफिस आता?
0: क्यों, आज क्या हुआ बोलो।
1: वो सर, मेरे छोटे लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया सर।
0: What? अरे ये कैसे हो गया सिकंदर भाई?
1: सीधा अस्पताल से भागता चला आ रहा हूँ मिस्टर भट्ट, रास्ते में चप्पल भी टूट गई।
0: और तुम्हारा लड़का क्या प्लास्टर चढ़ा?
1: हाँ सर, प्लास्टर चढ़ने के बाद उसे उसकी माँ टैक्सी में डालकर घर ले गई और मैं इधर ऑफिस को भागा। मुझे पता था सर कि अर्जेंट पेपर डील करने हैं।
0: ओह आई एम सॉरी मिस्टर सिकंदर।
1: ऑल राइट सर।
2: मगर भाई फ्रैक्चर हुआ कैसे?
1: वो इमाम दस्ते की मूसली गिरा दी मेरी लड़की ने उसके पैर पर।
0: ओह माय गॉड, अब कैसा है तुम्हारा लड़का?
1: क्या मालूम कैसा है सर, मैंने तो रोते रोते छोड़कर उसे दफ्तर की ओर लपका था, अब तो घर शाम को पहुंच कर ही देखूंगा।
2: अरे अरे बेचारा मासूम बच्चा। अरे भाई तुम चाहो तो साहब से कहकर बेशक जल्दी घर चले जाना सिकंदर। क्यों सुपरिटेंडेंट साहब?
0: हाँ, कोई बात नहीं, मगर मिस्टर सिकंदर की सीट पर कई अर्जेंट पेपर है।
2: वो मैं देख लूंगा सर, आप इसे जल्दी जाने दीजिए, हाजिरी तो इसने लगाई दी है सर।
0: अच्छा मिस्टर सिकंदर, अभी तो चीफ का राउंड होने वाला है, एक दो घंटे बाद चले जाना।
1: थैंक यू सर, मैं 3 बजे चला जाऊंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
3: हाय राम, 3 बजे के चले अब तक घर नहीं पहुंचे, और भैया 7 बजे दुकानें बंद होती है। नरेश कल से स्कूल के सफेद जूतों के लिए रो रहा है।
2: आप कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, और हद होती है बहानेबाजी की भी। मैं तो बच्चे की खैर खबर लेने आया था और
3: उन्हें खुद अपने घर की खबर नहीं।
2: तो सिकंदर भाई वाकई पक्के बहानेबाज बन चुके हैं।
3: पक्के से पक्के कहो बट भैया, कई बार तो हमारा भी दिल दहल जाता है उनकी झूठी बातों को सच समझ कर। उधर दफ्तर वाले हम औरतों को ही दोषी मानते होंगे अपने पतियों के लेट कराने के लिए। अरे भैया तुम उनके साथ ही हो, किसी तरह खत्म कराओ ना उनकी बहानेबाजी की आदत, हम तो भट्ट भैया बहुत परेशान हो चुके हैं।
2: और उधर दफ्तर के लोग भी भाभी जी, उनका रोज रोज का लेट आना, नित नए बहानों का सिलसिला, वो भी ऐसा तगड़ा कि बस क्या कहें।
3: मगर झूठ तो झूठ ही होता है भट्ट भैया।
2: अगर उस झूठ को झूठ साबित करने के लिए क्या दफ्तर के अफसर रोज रोज घरों में जाकर जांच पड़ताल करें, बीवी बच्चों से सच्चाई उगलवाएं? घर वालों का भी कोई फर्ज होता है।
3: नहीं नहीं भैया, यहाँ घरों में तो हमें ही उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है।
2: कभी तो पकड़ में आएंगे सिकंदर भाई, बुरा तो मानेंगे मगर राह रास्ते पर तो आ जाएंगे।

0: हाय राम, अभी तक गुसल खाने के फवारे के नीचे भरत नाट्यम कर रहे हैं। अजी सुनते हो?
1: अरे क्या है, नहा रहा हूँ।
0: घंटे भर इस फवारे की भागीरथी को अपने सिर पर धारण करके तुम्हारा गटवा गीला नहीं हुआ? मैंने कहा निकल आओ, 10:30 बज चुके हैं, तब तो नहीं जाना आज क्या? अरे छुट्टी लेनी है आज की।
1: अरे क्या मैं बेवकूफ हूँ जो उस दिन की छुट्टी लूँ जिस दिन खुद अफसर छुट्टी पर हो।
2: अजी वाह, बड़े कर्तव्य परायण हो गए हो, जो अफसर की गैर हाजिरी में दफ्तर जाना और भी खास तौर से जरूरी समझने लगे।
1: बिल्कुल।
2: मगर जब इतनी वफादारी की भावना जाग उठी है तो फिर लेट भी क्यों जाते हो? सुनो जी, कब तक उल्टे सीधे बहाने बनाते जाओगे? फंसोगे किसी दिन बुरी तरह, श्रीमान सिकंदर खूसट विलंबित जी।
1: अरे जा जा, बरसों बीत गए नौकरी करते करते, पूरी मौज मस्ती से है। अरे ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अफसर नाराज होने की बजाय सक पका कर हमदर्दी जताने लगता है और जितने लेट पहुंचे उतनी जल्दी छुट्टी पर जाने की कह देता है।
2: हाय राम, कैसे ढीठ होते हैं ये लेट लती।
1: और फिर आज तो हम खुद ही अपने अफसर होंगे। अरे पहुंच जाएंगे टहलते टहलते और लौट आएंगे जब तुमसे मिलने को दिल बेताब होगा।
2: चलो हटो भी, चलकर नाश्ता कर लो और दफ्तर पहुंचो वक्त से। हम औरतों को बदनाम मत करो। हाँ।
1: अरे वाह, दफ्तर लेट पहुंचे हम और डरो तुम लोग। चलो बेटा सिकंदर भाई, पत्नी का दर्द। ओके बाय।
3: यस सर, मैं सुपरिंटेंडेंट बोल रहा हूँ।

0: अरे अरे सुपरिंटेंडेंट साहब तो वो बैठे भीतर कमरे में।
1: यस सर यस सर, मैं तो आपका मैसेज मिलते ही दफ्तर पहुंच गया था सर, मगर मैं क्या करूं सर, वो उस अर्जेंट केस की फाइल शायद मिस्टर सिकंदर की मेज की ड्रॉअर में लॉक्ड है सर। जी हाँ, मिस्टर सिकंदर अभी तक नहीं आए सर। आई एम सॉरी सर, मैं कोशिश करता हूँ सर। जी जी मैं कोशिश करता हूँ सर।
0: अरे बाप रे, यहाँ तो नजारा ही दूसरा है। फंसे बेटा सिकंदर, आज तो साहब मेरा ही अर्जेंट केस बना देंगे। अरे अब क्या करूँ, क्या बहाना बनाऊँ लेटाने का। हाँ चुपचाप यहाँ से दबे पाऊँ घर लौट जाऊँ और बीमारी की छुट्टी मार दूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो फाइल तो मेरी ड्रॉअर में बंद है, ये चाबी लेने मेरे घर पहुँचे तो इस अर्जेंट केस के लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूँ इस इमरजेंसी की घड़ी में। अरे वो मारा, ये कुछ हुई ना नई बात है। ठीक है,
2: गुड मॉर्निंग सर।
3: ओ यू विलंबित के बच्चे।
2: यस सर।
3: आज तुमने मेरी सारी इज्जत मट्टी में मिलवा दी।
2: नो सर।
3: मेरी इतने वर्षों की नौकरी को कलंकित कर दिया।
2: नो सर।
3: मैं तुम्हें डिसमिस कराकर छोड़ूंगा।
2: नो सर, नो सर।
3: यस डिसमिस, नॉट लेस देन दैट।
0: मगर कुछ मेरी भी तो सुनिए सुपरिंटेंडेंट साहब।
3: क्या सुनिए तुम्हारी?
0: मेरे साथ भी तो कोई इमरजेंसी हो सकती
3: है। व्हाट इमरजेंसी? क्या हुआ, कौन मर गया, कौन अस्पताल चला गया, बोलो।
0: सर मेरी पत्नी सर।
3: क्या?
0: मेरी बीवी।
4: क्या कह रहे हो सिकंदर भाई, कल शाम तक तो भाभी बिल्कुल ठीक ठाक थी, मैंने खुद देखा। अरे भाई एकदम क्या हो गया?
0: एकदम से वो उल्टियां सर, उल्टियां सर, उल्टियों पर उल्टियां सर, दम घुटने लगा, फिर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां सर, मैं घबरा गया, टैक्सी पकड़ी और फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले गया। मगर जब तक सर,
4: तब तक क्या क्या हुआ, क्या हुआ तब तक? हाँ बोलो भाई
0: सर।
4: हाँ बोलो।
0: उल्टियां बंद हो चुकी थी और डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करके बताया सर सर के वो
4: हाँ बोल भाई बोल,
0: वो पाँव भारी है।
4: पाँव भारी है, यानी कि नए बच्चे की माँ बनने वाली।
2: आपको कोई तकलीफ है?
3: ऐसे शट अप
2: जी,
3: यू लायर, झूठे बहाने बात मत कर।
2: सुपरिंटेंडेंट साहब आप मुझे गालियां दे रहे हैं, ये ऑफिस है सर।
3: अरे मेरा बस चले तो गोली से भी उड़ा दूं तुम जैसे झूठे मक्कारों। वाह क्या बहाना बनाया है, बीवी का पांव भारी है और इससे इट इज इम्पॉसिबल।
4: जी वो माफ कीजिए सर, मिस्टर सिकंदर भला इसमें भी क्या झूठ बोल सकते हैं।
2: यस
4: सर, सर सच्चाई तो कुछ महीने बाद सामने आ ही जाएगी सर।
3: सच्चाई?
2: यस सर।
3: अरे ऐसे झूठे बहाने बाजों के कारण तो सच्चे लोगों पर से भी विश्वास खत्म हो गया। सच्चाई जानना चाहते हो?
2: यस सर।
3: तो ये देखो, ये रही सच्चाई।
4: ये कैसा कागज है सर?
3: तुम ही पढ़कर बताओ मिस्टर सिकंदर।
2: यस सर। अरे सर ये तो मेरे स्पेशल इंक्रीमेंट का ऑर्डर है सर।
3: ऑर्डर नहीं, अभी ड्राफ्ट है, खुद मैंने तैयार किया।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
4: स्पेशल इंक्रीमेंट का?
2: यस
4: सर। कौन हकदार होता है इस स्पेशल इंक्रीमेंट का?
3: जो कर्मचारी अपने और सारे देश की भलाई और खुशहाली का राज समझते हैं और ठीक समय पर सही कदम उठाते हैं।
4: मिस्टर सिकंदर इतने समझदार कब से हो गए सर?
3: ये भी जानना चाहते हो? ये रहा दूसरा कागज, बताओ सिकंदर क्या है ये कागज, बोलो।
0: ये तो मेरा फैमिली प्लानिंग, यानी सर वो ऑपरेशन कराने का सर्टिफिकेट।
3: छी छी सिकंदर, तुम्हारे बहानों का सिलसिला इतने घिनौने झूठ तक पहुंच सकता है?
2: बस सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैं कहता हूँ मेरी बात सुनिए।
3: आई विल सी दैट यू आर डिसमिस्ड।
2: आई विल नॉट मेंबर हो जाऊंगा सरकार, मैं मर जाऊंगा सरकार, मैं अगर नौकरी छूट गई साहब कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा गले में फंदा था ये फंदा, उल्टा मेरे गले में।
5: सिलसिला बहानों का अभी आप सुन रहे थे सुरेंद्र कौशिक का लिखा ये प्रहसन, निर्देशक थे सुशील बैनर्जी, ये थी आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की।

0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्पेन और ऑस्ट्रिया होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची, और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की है। दोनों देशों ने एशिया में जिम्मेदार शक्तियों और प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा सुगमता को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की साझा इच्छा व्यक्त की। भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान का अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय विभिन्न पहलों पर सहयोग करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2: नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की मजबूत नींव पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे अलग शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की भूमिका को स्वीकार किया।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है। वे आज एक निजी टेलीविजन चैनल द्वारा आयोजित एशियाई सदी को आकार देने संबंधी विषय पर भारत जापान रणनीतिक संवाद को संबोधित कर रहे थे।
3: ट्रेड ऑल्सो इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस पार्टनरशिप।
4: भारत के कुशल कार्यबल के लिए अवसर खुल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्यान सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। निवेश भारत और जापान की रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख संचालक बनकर उभरा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
3: ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डायमेंशन।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्वस्थ भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की तेल शोधन क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित किया। श्री पुरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में पेट्रोल की कीमत में केवल 5.58% और डीजल की कीमतों में 6.23% की ही वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य, आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष जून में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4% की वृद्धि दर्ज की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलवे ने पिछले महीने 142 करोड़ टन से अधिक माल की ढुलाई की। इस वर्ष जून में यात्री आवागमन में भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खंड आवंटियों को अधिक वित्तीय सुविधा प्रदान करने और कोयला क्षेत्र में व्यापार को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किया है। कोयला खंड आवंटन संशोधन नियम 2026 के अंतर्गत मंत्रालय ने कोयला खंड और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत आवंटित कोयला खंडों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी के स्थान पर बीमा गारंटी बॉन्ड के उपयोग को सक्षम बनाया है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। केरल में शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाने वाले नशीले पदार्थों के गिरोहों पर राज्य पुलिस की कार्रवाई में 30 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अवैध दवाएं जब्त की गई हैं। केरलम पुलिस के अनुसार अधिकारियों ने राज्य में 5,353 मामले दर्ज किए हैं और 5,736 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के बच्चों की असाधारण

0: उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 के अंतर्गत खंडवा नगर निगम ने पॉलीथीन लाओ चाय पाओ नाम की एक पहल शुरू की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में नुनवान और गांदरबल जिले के बालताल स्थित दोहरे शिविरों में पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: यात्रियों का पहला जत्था आज दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री शामिल हैं। इसमें से 2,510 यात्री पहलगाम के रास्ते से यात्रा करेंगे, जबकि 2,312 यात्री बालतल से होते हुए बाबा बर्फानी की गुफा का रुख करेंगे। नुनवन और बालतल कैंप पहुंचते ही प्रशासन ने यात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यात्रा के मद्देनजर दोनों रास्तों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। दोनों रास्तों पर पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आर्मी जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं, मौसम की जानकारी के लिए प्रणाली, अहम जगहों पर क्विक रेस्पॉन्स टीमें, बड़े पैमाने पर CCTV निगरानी और RFID आधारित प्रणाली भी लगाई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं इश्फाक शाह।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी आकलन जारी है और इसके पूरा होने पर केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल SDRF और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के मानदंडों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: विभाग ने अगले 2-3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। इसी दौरान छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। हालांकि दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड के लॉस एंजल्स स्टेडियम में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। स्क्वाश में विल्वन सेंथिल कुमार और तन्वी खन्ना ने मुंबई में PSA चैलेंजर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेंथिल कुमार ने मिस्र के अब्दुल्ला हाफिज और को, जबकि तन्वी ने जापान की जोई फू को हराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। श्री मोदी ने नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता की। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले एक वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। केंद्र ने देश भर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: આ આકાશવાણી છે અને આપે ટ્યુન કર્યું છે વિવિધ ભારતીનું સુરત કેન્દ્ર, ઓનલી ઓન 101.1 FM. આજે સાંજે 7:10 અમારા અમદાવાદ કેન્દ્ર પરથી પ્રસારિત પ્રાદેશિક સમાચારનું ધ્વનિમુદ્રણ હવે સાંભળીએ.
4: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા પ્રાદેશિક સમાચાર રીટા દવે વાંચે છે. સૌ પ્રથમ મુખ્ય સમાચાર. રાજ્યમાં 21 મહેસુલી સેવાઓ આજથી ઓનલાઈન.

0: अब आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: कीजिए सूरत एफएम के साथ अपनी दिल की बात।

0: रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 02612236209।
1: ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग। ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग।
0: सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।
2: हेलो सूरत एफएम स्पीकिंग 101.1 मेगाहर्ट्ज़ सूरत एफएम
3: जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज।

दोस्तों, लखन नाम तो फिल्म राम लखन में अभिनेता अनिल कपूर का नाम था, लेकिन इस गाने की मकबूलियत ने पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज को सुनने वालों के दिलों में इस तरह बसा दिया जैसे सीप में मोती और किसी अंगूठी में कोई शानदार नगीना।

0: नगीना
1: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना
0: उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना।
2: 2 जुलाई 1954 को गुमा वेस्ट बंगाल में जन्मे मोहम्मद अजीज का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद अजीज उन नबी। शुरुआती कुछ फिल्मी गाने उन्होंने मुन्ना अजीज के नाम से भी गाए, बाद में उनकी पहचान बनी बतौर पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज के नाम से। मोहम्मद अजीज जाने माने पार्श्व गायक मोहम्मद रफी के बड़े प्रशंसक थे।
0: नफनकार तुझसा तेरे बाद आया, नफनकार तुझसा

0: मोहम्मद अजीज को अपने जीवन में फिल्मी गायन का पहला मौका मिला बंगाली फिल्म ज्योति से। दोस्तों, आपको यहां याद दिलाना चाहेंगे कि बंगाली फिल्मों में मोहम्मद अजीज के तमाम गाए गीत बेहद मशहूर हुए। उसके बाद 1984 में हिंदी फिल्म अंबर में भी उन्होंने पार्श्व गायन का सिलसिला जारी रखा, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत जगत में उनकी पहचान बनी मर्द फिल्म के इस गाने से।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा,

0: अरे क्यों भाई बादल क्यों भाई मोती, मैं टट्टे का हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।
1: अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मर्द का ये सुपरहिट गीत गाकर मोहम्मद अजीज रातों रात पार्श्व गायन की ऊंची पायदान पर जा पहुंचे। इस फिल्म का संगीत दिया अनु मलिक ने और लोगों ने पहले तो ये समझा कि ये गाना शब्बीर कुमार ने गाया, लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला मोहम्मद अजीज की आवाज है और बाद में इस आवाज ने धूम मचा दी।

मोहम्मद अजीज का बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री से भी जो गहरा नाता रहा है उसका जिक्र हम शुरू में ही कर चुके हैं। हिंदी फिल्म जगत की

मोहम्मद अजीज ने अपने गायन जीवन में अपनी समकालीन दिग्गज गायिकाओं के साथ गीत गाए। लता जी के साथ उनका गाया ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं, जो सिंदूर फिल्म का है।

दोस्तों मोहम्मद अजीज ने, जैसे कि हम बता चुके हैं, अपनी समकालीन हिट सुपरहिट गायिकाओं के साथ भी गाने गाए हैं, तो उसमें अलका याग्निक का जिक्र ना हो तो प्रोग्राम थोड़ा अधूरा सा लगेगा। आइए सुनवाते हैं आपको बंजारन फिल्म का ये गाना।

और ये गीत है साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप भी याद रखेंगे क्योंकि फिल्म का नाम है याद रखेगी दुनिया।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छायागीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। तेरी यादों की डोर से बंधा मेरा मन न जाने कितने सपने बुनता रहता है। कभी तेरी एक मुस्कान इन धागों को और मजबूत कर देती है, तो कभी तेरा इंतजार इन्हें और भी अनमोल बना देता है। नजर तो नहीं आते ये प्यार के धागे, मगर हर धड़कन में इनकी छुअन महसूस होती है। शायद इसी बंधन का नाम मोहब्बत है, जो दूरियों में भी साथ है।

रोज एक ही ख्वाब मेरी आंखों में चला आता है। उस ख्वाब में तुम होते हो और तुम्हारे साथ कुछ अधूरी सी प्यारी सी बातें होती हैं। कभी तुम मुस्कुरा कर पास आ जाते हो तो कभी बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह जाते हो। सुबह आंख खुलती है तो ख्वाब टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी वही मुस्कान मन में ठहर जाती है। शायद इसी का नाम प्यार है, जब हकीकत से पहले कोई अपने ख्वाबों में बसने लगे।

मैंने आज दिल से तुझे अपना माना है, तेरी हर सांस को ही अपना जाना है। तू भी मेरी धड़कनों का हिस्सा बन जा, मेरे हर ख्वाब का सच्चा किस्सा बन जा। ना मैं तुझसे दूर जाऊं, ना तू मुझसे कभी, ये साथ हमारा टूटे न चाहे आए कैसी भी घड़ी। हम दोनों का ये रिश्ता बस यूं ही रहे, हर जन्म में तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुझे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन उतर आता है, जैसे तेरी हर खामोशी भी मुझसे कुछ कह जाती हो। तू सावन है तो मैं किसी सूखी नदी सी हूँ, तेरे आने से ही जैसे मैं पूरी हो जाती हूँ। तेरी हंसी में मुझे अपना बचपन दिखता है, तेरी आंखों में मेरा हर सपना सजता है। और सच कहूँ तो तुझे देखते ही लगता है कि मैं तुझे युगों युगों से जानती हूँ।

मैं उस बात से अनजान हूं जिसने मेरी रातों की नींद चुपके से ले ली। अब हर रात लंबी लगती है, जैसे समय भी मुझसे रूठ गया हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, पर वजह कोई नहीं बता पाता। खामोशी भी अब कुछ कहती सी लगती है, पर मैं समझ नहीं पाती। बस इतना एहसास है कि कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर जगा रहा है, और मैं अब उस नए एहसास को और करीब से जानना चाहती हूँ।

दो नैन है उसके, पर उनमें मेरी ही एक कहानी बसी है। कुछ उसके होठों ने कभी कहा नहीं, पर मैं उसे हर बार आंखों में पढ़ लेती हूँ। कुछ बातें वो छुपा लेता है और कुछ मैं भी मुस्कुराकर अनसुना कर देती हूँ। लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हर एहसास मुझे साफ साफ समझ आता है, जैसे कोई अधूरी किताब हो जिसे हम दोनों मिलकर जी रहे हों, और मैं हर बार उसके नैनों में खुद को उसकी मोहब्बत बनकर देख लेती हूँ।

0: إذاعة
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन
2: कौन लाया, कौन लाया?

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिव्य कुमार और अदिति सिंह शर्मा की आवाजों में आपने सुना ये पारंपरिक गीत। आइए रंग तरंग कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनते हैं।